सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सक संवत 1948 के श्रावण माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। उपस्थित है हम अपने आज के प्रसारण के साथ। आप सबों का दिन मंगलमय हो।

0: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीज की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत

ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है अनुभूति और श्रद्धा।

वर्षों पहले आकाशवाणी से एक लघु कथा प्रसारित हुई थी। हनुमान को क्या सूझा कि उसने अपने निवास वाले उपवन में एक दिन अपने इष्ट मित्रों को फलाहार के लिए निमंत्रित कर दिया। लक्ष्मण आए, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, यहां तक कि तारा भी, न आए तो राम। हनुमान का मुंह लटक गया। दूसरे दिन सेवा में उपस्थित होने पर उन्होंने राम से शिकायत की। राम का उत्तर था, मैं तुमसे अलग हूं ही कहा कि सशरीर आता। वापस आकर हनुमान ने देखा उनके उपवन में चप्पे चप्पे पर राम के पदचिन्ह अंकित थे। नव वर्ष की शुभकामना फोन से देते हुए मैंने अपने एक दो देशी मित्र से शिकायत की, आप तो कभी फोन भी नहीं करते। उनका उत्तर बेहद अपनत्व भरा था, फोन नहीं करता तो इसका अर्थ ये थोड़े ही है कि आपको याद नहीं करता। आप खाते समय या पानी पीते समय सरकते हैं तो कहा जाता है कोई याद कर रहा है। क्या सचमुच कोई याद करता है? यह अनुमान जिसने भी गढ़ा हो बड़ा दूरदेशी रहा होगा। जो अपने पास नहीं है उनके बारे में हम सकारात्मक सोच विकसित करें। वह याद करे न करे, हम स्वयं को भरोसा दें कि किसी ने याद किया होगा, और याद किया होगा तो मनसा ही किया होगा न? वाचा तो उसका न फोन आया और न संदेशा, न कुछ आए तो भी हित के लिए हम हित ही सोचें। वह याद कर रहा है, इसी में हम सरक गए हैं। जो अपने हैं, हितु हैं, वे इसी तरह याद करते हैं। यह भ्रम है तो बुरा क्या है? भ्रम कम से कम मन को उसके प्रति उदार तो बनाए रखता है। राम कथा का प्रसंग याद कीजिए। भरत को राम से मिलने जाना है, क्या होगा कहीं संशय नहीं। भरत को विश्वास है, आपन जानिन त्याजी हैं मोही, रघुबीर भरोसू। लक्ष्मण को भरोसा नहीं है। भरत को सदल बल आते देख वे शंका करते हैं, कहीं भरत आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। यह शंका लक्ष्मण मन की उपज है, राम मन की नहीं। राम मन तो शुभ की उम्मीद करता है, आपको याद करता है, जहां है वहीं आपके शुभ की कामना करता है। कभी आतंकित है, भयभीत है तो आपके

अनुदार व्यवहार की कल्पना करके नहीं, प्रकृति आपके प्रतिकूल आपके पीड़ा न पहुंचाए इसकी चिंता ही उसके चितवन के केंद्र में है। मां राजभवन में है, बेटा राम वन में है और घनघोर वर्षा हो रही है तो मां परेशान है, राम का मुकुट भीग रहा है। आपकी जो अपने आपके पास नहीं है उनकी शुभेच्छाएं सदा आपके पास है। हनुमान की वाटिका में राम के पद चिन्हों की तरह आप भी खुले मन से उन्हें याद कीजिए, उन्हें सरकने दीजिए। राम मन सिर गिए राम मन ही मिलेगा, विश्वास कीजिए। कौन कहता है कि सुरुचि नहीं है, आप सही पात्रता को विकसित कीजिए।

तो अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था अनुभूति और श्रद्धा। स्टूडियो की घड़ी की सुई में सुबह के 6:10 हो रहे हैं और समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस भजन के साथ।

0: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड 48 48।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

तो अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। और आइए बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण में।

सुबह 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग का समय होगा सुबह 7:00। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रसंग और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8:00 और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9:00 से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। सुबह 11 बजे से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर और 1:20 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से और पुनः 3 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से और 4:02 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से और 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी।

खेती बारी आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर, और संध्या 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। छह बजकर 2 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेहनत कस। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय होगा संध्या 6:30 पर। संध्या 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और जिले में आजकल आप सुनेंगे संध्या 7:10 पर हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नव चेतना।

7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में। 8:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे News@9 हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा और 10:30 पर आप सुनेंगे

कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में, और आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य पदकसंख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्णपदकानि, 12 रजतपदकानि, 6 कांस्यपदकानि च सन्ति। इति वार्ताः।
1: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो आप सुन रहे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं शारदा सिन्हा की आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला गीत।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं पे समाप्त होता है। तो अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रसंग में पुनः वार्ता दहेज प्रथा। वार्ताकार है सुष्मिता शर्मा।
1: आज कलम चलने लगी है बेटी के अधिकार में, आज कलम चलने लगी है बेटी के अधिकार में, क्योंकि हार जमाने की भी है हर बेटी के हार में। मैं बताना चाह रही हूँ उस समाज के दलबल को घुट घुट कर जी रही उस बेटी के समर्पण को, घुट घुट कर जी रही उस बेटी के समर्पण को। सात फेरों का है बंधन जो बचनों के संग बनता है, और आत्मा के मिलन से जीवन में रंग भरता है। दोनों में झगड़ा तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, दोनों में झगड़ा तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस मौके पर लड़का लड़की को ताना कसे दहेज का, टीवी फ्रिज और कूलर मिक्सर और सेज का। अगर बेटी लाचार हुई तो कौन खामियाजा भुगतेगा, अगर बेटी लाचार हुई तो कौन खामियाजा भुगतेगा। बात पैसों की है नहीं, पर कैसे जीवन सुधरेगा। आज भारत विकासशील देशों में गिना जाता है, परंतु कुछ छोटी सोच और समाज के पुराने रिवाज, जैसे बाहर शौच करना, कूड़ा इधर उधर फेंकना, बेटी को शिक्षा ना दिलाना और दहेज प्रथा, हमारे देश भारत को विकसित होने से रोक रहे हैं। 21वीं सदी में विकासशील भारत के लिए दहेज प्रथा एक कोढ़ का काम कर रही है। दहेज प्रथा हमारे देश के लिए एक कलंक है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह प्रथा किसी आतंकवाद से कम नहीं है। दहेज प्रथा का चंगुल हर जगह व्याप्त है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि अमीर हो या गरीब, हर वर्ग के लोगों को जकड़ रखा है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में भी दहेज प्रथा देश में एक अभिशाप के रूप में फैल चुका है। आज भी इस 21वीं सदी में बेटी के जन्म लेते ही ज्यादातर माता पिता के सिर पर चिंता सवार हो जाता है। चिंता इस बात की नहीं होती है कि बेटी की पढ़ाई कैसे करवाएंगे,

चिंता तो इस बात की होती है कि बेटी के विवाह कैसे करवाएंगे, विवाह के लिए दहेज कैसे इकट्ठा करेंगे। दहेज की ज्वाला से जलती है जिंदगियां, दहेज के सहारे कहां चलती है जिंदगियां। हालांकि आज कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है, परंतु आज भी ज्यादातर घरों में बेटी पैदा होती है तो उनके लिए वह दुख का दिन होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है दहेज प्रथा। आज भी हमारे हिंदू समाज के माथे पर यह एक कलंक जैसा चिपका हुआ है। दहेज प्रथा की शुरुआत कब हुई यह बता पाना सटीक रूप से तो बहुत मुश्किल है, परंतु यह बता सकते हैं कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। रामायण काल से भी कन्या के विदाई के समय पर माता पिता के द्वारा दहेज के रूप में धन संपत्ति देने का उदाहरण मिलता है, परंतु उस समय दहेज को लोग स्वार्थ भावना के रूप में नहीं लिया करते थे और लड़के वालों की ओर से तो कोई दहेज की मांग नहीं हुआ करती थी। विवाह को एक पवित्र एवं धार्मिक बंधन माना जाता था जिसमें दो परिवारों का मिलन होता था। उस समय दहेज को लड़की के माता पिता लड़की के लिए सामान के रूप में दे दिया करते थे, जिसे बिना कोई लोभ लड़के के घर वाले रख लिया करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और हिंदू समाज में सती प्रथा, जाति पाति, छुआछूत जैसी समाज में बुराइयां बढ़ने लगी, वैसे ही दहेज ने भी एक व्यापार का रूप ले लिया। शुरुआती समय में तो जेवर, कपड़े, फर्नीचर, फ्रिज, गाड़ी और टेलीविजन तक ही बात थी, लेकिन बाद में लोग मोटी रकम भी लड़की वालों से लेने लगे। गलती से कहीं अगर लड़का यदि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ी सरकारी नौकरी वाला हो तो फिर सौदे की बात जमीन जायदाद या मोटर कार तक भी पहुंच जाती है। आज 21वीं सदी में दहेज प्रथा एक बहुत ही क्रूर रूप ले चुका है। ऐसा भी होता है कि अगर विवाह के समय दहेज में कमी हुई तो कुछ लोग तो शादी किए बिना ही बारात वापस ले जाते हैं, और अगर गलती से शादी हो भी जाती है तो लड़की का जीवन नरक के समान बीतता है, या फिर लड़कियों को कुछ गलत बहानों से तलाक दे दिया जाता है। बात तो यहाँ तक भी बिगड़ चुकी है कि लड़कियों से तलाक न मिलने पर ससुराल वाले उन्हें जलाकर मार देते हैं। आज दहेज प्रथा कैंसर की तरह समाज को नष्ट करते जा रहे हैं। सरकार भी दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत कड़े नियम बना रही है, परंतु दहेज प्रथा कुछ इस तरीके से पूरे देश में फैल चुका है कि अब इसे रोकना कोई आसान काम नहीं लग रहा है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं। आज बेटी बेटों के साथ कंधा मिलाकर देश के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। पता नहीं फिर भी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि बेटा बेटी एक समान। दहेज प्रथा के कारण ही नारी जाति को कई प्रकार के अत्याचार को सहना पड़ा है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि अमीर हो या गरीब, हर वर्ग के लोग को यह बुरी तरह से जकड़ कर रखा है। इसके खिलाफ सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों का हमारे रूढ़िवादी सोच वाले लोगों पर कोई असर नहीं होता है। वह दहेज लेना एक अभिमान का विषय मानते हैं। दहेज के खिलाफ ना तो कोई बोलना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इसमें सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। दहेज प्रथा ने लोगों की सोच को इतना खोखला कर दिया है कि अगर उनको दहेज नहीं मिलता है तो वो शादी से इनकार कर देते हैं। भ्रूण हत्या भी दहेज प्रथा की ही देन है, क्योंकि लोग मानते हैं कि बेटियां तो पराई होती है, वह हमारे किसी भी प्रकार से काम नहीं आएंगी और उनके शादी पर उनको दहेज भी देना पड़ेगा। इसलिए अब बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई है। वह लड़की होने को सिर्फ खर्चा ही मानती है, जिस कारण बेचारी लड़कियों को बिना कोई कसूर के कोख में ही मरवा दिया जाता है।
भारत में

0: पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी कारण महिलाएं अपने आप को कमजोर मानती हैं और दहेज रूपी महामारी का शिकार हो जाती हैं। शिक्षा की कमी के कारण भी दहेज को बढ़ावा मिलता है। लोगों की मानसिकता का इसी से पता लगाया जा सकता है कि अखबारों या इंटरनेट पर देखा होगा कि शादी के विज्ञापनों में लिखा होता है सुंदर लड़की चाहिए, तो बस जो सांवली लड़की है या जो सुंदर नहीं है उनके लिए बहुत सारा दहेज चाहिए। लेकिन जो भी हो, इसके दुष्परिणाम यह होता है कि इसके फलस्वरूप देश के विकास में बाधा होती है, महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। इसके उपाय के फलस्वरूप हमें दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाना चाहिए, कड़ी कानून बनाना चाहिए। लड़कियों को शिक्षित बनाना होगा, महिला सशक्तिकरण पर जोर देना चाहिए, लड़का लड़की के भेदभाव को खत्म करना होगा, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना होगा तथा दहेज प्रथा पर सामाजिक जागरूकता फैलाना होगा।
1: तो भी आपने सुना कार्यक्रम प्रसंग में पुनः प्रसारण। वार्ता विषय था दहेज प्रथा। वार्ताकार थी सुष्मिता शर्मा।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और सुनते हैं राजेश चटर्जी की आवाज में गाए इस गीत को।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: तो आप सुन रहे कार्यक्रम सुगम संगीत, तो आइए आगे सुनते हैं परेश दत्त द्वारिक की आवाज में गाए इस गीत को।
2: दीन को दयालु

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पे समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनकी और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
5: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
6: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगिणी पांडे।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि

0: राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
2: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण। पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोकसत्ता में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: यह संदेश
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम। डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत का रास्ता छोड़ने की अपील की। कहा, भटके हुए युवाओं को दंड देने की बजाय सही मार्गदर्शन और सहानुभूति की जरूरत। 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से लगातार तीसरे दिन की 8 घंटे लंबी पूछताछ, 3 अगस्त को दोबारा पेश होने का समन। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा इलाज। एनएचएम की बैठक में भीड़ प्रबंधन, दवा वितरण और क्षेत्रीय भाषाओं में हेल्थ चैटबॉट बनाने पर मोहर। राज्य की सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले शुरू होंगी आधार सेवाएं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रज्ञा केंद्रों को और सशक्त बनाने का दिया निर्देश। और झारखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी रवि केसरी का भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच पद पर हुआ चयन। देश भर के टॉप 20 उम्मीदवारों में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। एक वीडियो संदेश में जंतर मंतर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने भटके युवाओं के प्रति सहानुभूति जताने और उन्हें दंड की बजाय सही राह दिखाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इसमें शामिल बच्चों को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी गलतियों से सीख कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।
5: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
4: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 से 2031 तक के लिए खेलो इंडिया योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस पर 36,441 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे युवाओं को खेलों में उत्कृष्टता का मार्ग मिलेगा। यह योजना जमीनी स्तर से ओलंपिक स्तर तक प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करेगी।
6: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
4: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा गड़बड़ी मामले में आयोग के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से सीआईडी की पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कल लगातार तीसरे दिन उनसे करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सीआईडी ने उन्हें 3 अगस्त को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य से पूछताछ जारी है। रांची के नामकुम स्थित एनएचएम मुख्यालय में अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें अस्पतालों में मरीजों की सुविधा, डेटा कलेक्शन, क्राउड मैनेजमेंट और क्यू सिस्टम को सुगम बनाने में एआई की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। अभियान निदेशक ने कहा कि एआई की मदद से ग्राउंड लेवल डेटा का सटीक विश्लेषण होगा, जिससे क्षेत्रवार बीमारियों के बोझ का तुरंत अंदाजा मिल सकेगा। देश भर में कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे। धनबाद आईआईटी आईएसएम परिसर से इसका सीधा प्रसारण होगा, जहां छात्र नशा

मुक्ति की सामूहिक शपथ लेंगे। युवाओं से आज तक पोर्टल पर डिजिटल संकल्प लेने की अपील की गई है। धनबाद के पॉलिटेक्निक उप डाकघर घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने कल लोयाबाद निवासी पंकज चौहान के घर छापेमारी की। समन के बाद भी पूछताछ में शामिल न होने पर ईडी उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। जांच में उसके खाते से 2,89,00,000 रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जामताड़ा में सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हुए हंगामे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान श्री मरांडी ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है।
3: झारखंड के छात्र और नौजवान धरने पर, हमारी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी। सरकार यदि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय छात्रों और नौजवानों की जो मांगे उन मांगों को गंभीरता से सरकार को सुनना चाहिए और समाधान करनी चाहिए।
2: दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैया टांड में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। झामुमो ने राज्य के सभी 24 जिलों में श्रद्धांजलि सभाओं की तैयारी की है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने घोषणा की है कि राज्य की सभी पंचायतों में आगामी 15 नवंबर से पहले आधार सेवाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाएंगी। रांची में आयोजित 17वें सीएससी स्थापना दिवस समारोह में मंत्री ने प्रज्ञा केंद्रों को और सशक्त बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार इन केंद्रों के माध्यम से हर गांव तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाकर अंतिम व्यक्ति को सशक्त कर रही है।
4: सीएससी के साथ पंचायती राज बहुत स्ट्रांगली काम करते हुए आज डिजिटल पंचायत का जो हम लोगों का विजन था वो हम लोगों ने पूर्ण किया है। पिछले दिनों ही जो बैंकिंग और झारनेट की जो सुविधाएं उन सब से आगे बढ़ते हुए आधार की सेवा अब पंचायतों के माध्यम से मिलने लगी है।
2: पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से हुई करीब 45 लाख रुपए की मोबाइल और लैपटॉप चोरी मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी ने बताया कि वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर साहिबगंज के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में आज से 3 अगस्त तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के रवि केसरी का भारतीय खेल प्राधिकरण साइन

में बैडमिंटन कोच के पद पर चयन हुआ है। हाल ही में जारी चयन सूची में देश भर के 20 उम्मीदवारों में रवि को यह स्थान मिला है। उनकी इस उपलब्धि से राज्य के खेल जगत और युवा खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी भर्ती घोटाला मामले में पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से लगातार तीसरे दिन सीआईडी पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी के कुछ सदस्य की भी भूमिका संदिग्ध, समन जल्द। प्रभात खबर की सुर्खी है, 1,08,00,000 रूपये का राज छिपा, वापस मांगी जमीन, हाईकोर्ट ने प्रार्थी पर ठोंका, 12,00,000 रूपये का जुर्माना। सड़क हादसे से दिव्यांगता के एक मामले में हिंदुस्तान के शब्द हैं, हादसे ने छीनी तरक्की, कोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा। दैनिक जागरण लिखता है, धड़कता दिल लेकर जिंदगी बचाने चली वंदे भारत एक्सप्रेस। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत का रास्ता छोड़ने की अपील की। कहा, भटके हुए युवाओं को दंड देने की बजाय सही मार्गदर्शन और सहानुभूति की जरूरत। 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से लगातार तीसरे दिन की 8 घंटे लंबी पूछताछ, 3 अगस्त को दोबारा पेश होने का समन। राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा इलाज। एनएचएम की बैठक में भीड़ प्रबंधन, दवा वितरण और क्षेत्रीय भाषाओं में हेल्थ चैटबॉट बनाने पर मुहर। राज्य के सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले शुरू होंगी आधार सेवाएं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रज्ञा केंद्रों को और सशक्त बनाने का दिया निर्देश। और झारखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी रवि केसरी का भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच पद पर हुआ चयन, देश भर के टॉप 20 उम्मीदवारों में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो अभी आपने सुना था मोहम्मद रफी को फिल्म दिल एक मंदिर में, और आइए प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
0: फिल्म का नाम है वीर ज

0: चित्रलोक। दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जब नहीं आए थे तुम, अभी आपने ये गाना सुना, देव फिल्म का ये गाना था। आज अली सरदार जाफरी की याद का दिन है और ठीक इसी तरह की एक नज्म है उनकी, जब नहीं आए थे तुम, ये गीत देव फिल्म में निदा फाजली ने लिखा था। और अली सरदार जाफरी लिखते हैं, तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो मौजूद थे तुम, आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए, तुम नहीं आए थे जब, तभी तो तुम आए थे। अली सरदार जाफरी की याद को हमारा नमन। और चित्रलोक का अगला गाना ए आर रहमान, फिल्म हाईवे।

एआर रहमान की आवाज थी, हाईवे फिल्म का ही गाना था। और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता।

प्यार कार्यक्रम में आज दास्तान उस अदाकारा की, जिसे बचपन में महजबी बानू कहा गया और बड़ी होकर वो कहलाई मीना कुमारी।

मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। बचपन से ही मीना कुमारी बतौर बाल कलाकार फिल्मों की दुनिया में चली आई थीं। उनके बचपन का नाम था महजबी बानो। अली बख्श और इकबाल बेगम की तीसरी बेटी थी महजबी। इसके अलावा बाकी 2 बेटियां थीं खुर्शीद और मधु। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नन्ही महजबी को फिल्मी दुनिया में ला दिया गया। मीना कुमारी तब तकरीबन 5 बरस की थी और उनके पिता अली बख्श रूपतारा स्टूडियोज में एक्टर बनने के लिए जद्दोजहद किया करते थे। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने महजबी को भी फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नन्ही महजबी अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी। 7 बरस की उम्र में नन्ही महजबी ने

फिल्म फर्जंदे वतन में काम किया। फिल्मी दुनिया में आने के लिए नन्ही महाजबीन का नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया। प्रकाश स्टूडियोज की फिल्म फर्जंदे वतन सन 1939 में आई थी और इसके निर्देशक थे विजय भट्ट। इसके बाद नन्ही मीना कुमारी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा और अलादीन और जादुई चिराग। प्रकाश स्टूडियोज में इस नन्ही कलाकार ने अपनी अभिनय प्रतिभा के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था। इसीलिए फर्जंदे वतन के निर्देशक और निर्माता विजय भट्ट ने जब बैजू बावरा बनाने का फैसला किया तो बतौर हीरोइन मीना कुमारी को मौका दिया। बैजू बावरा मीना कुमारी की पहली कामयाब फिल्म थी। सन 1953 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मीना कुमारी ने इस फिल्म में अभिनय के लिए हासिल किया।

इसके बाद बीना कुमारी की एक के बाद एक कई कामयाब फिल्में आईं। परिणीता 1953, फिल्म दायरा 1953, बीआर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता में भी उन्होंने अभिनय किया। सन 1957 में आई शारदा।

मीना कुमारी ने ज्यादातर वो फिल्में की जिनमें वो एक दुखियारी स्त्री थी, समाज और हालात की सताई हुई एक दुखियारी स्त्री जिसके हिस्से में सिर्फ गम आए हैं, आंसू आए हैं, तकलीफें आई हैं और आई हैं ठोकरें।

मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हल्की फुल्की फिल्में ना की हों। सन 1955 में आई सी रामचंद्र के नायाब संगीत वाली फिल्म आजाद।

0: आधे घंटे के इस कार्यक्रम में अदाकारा मीना कुमारी के पूरे करियर को समेटना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो मुमकिन है कि हम उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं की बातें करें। सन 1962 में आई फिल्म साहेब बीवी और गुलाम। गुरुदत्त की यह फिल्म मीना कुमारी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है।
1: मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
2: कुछ भी नहीं देख पाए।
1: क्या बकवास करती हो, मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं?

0: भी कर्तव्य नहीं।
1: जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरू से सीखना पड़े, लाना तो चाहिए।
0: रोज ही तो जाते हो वहाँ, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो।
1: मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों का ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं।
0: सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज, कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों?
1: सेवा करना जानती हो तुम लोग?
0: स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ।
1: मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? कैसे चुन्नी दासी गाती है, गा सकोगी? नाच सकोगी मेरे साथ?

लोगों ने यह भी कहा कि फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की यह भूमिका, जिसमें मीना कुमारी छोटी बहू बनी थी, असल में उनकी असली जिंदगी से बहुत मेल खाती है। दरअसल मीना कुमारी कमाल अमरोही से अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के 6 साल के अंदर ही वो और कमाल अमरोही अलग हो गए थे। मीना कुमारी ने तलाक के समय लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नजर कहर के साथ, जवानी भी मेहर के साथ लौटा दो। मीना कुमारी के अंदर एक ठोकरें खाई हुई स्त्री थी, जिसका दिल छलनी छलनी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी शायरा भी थी। उनकी मौत के बाद जाने माने शायर, गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने उनकी गजलों की किताब छपवाई और उसका संपादन किया। अपनी एक गजल में मीना कुमारी लिखती हैं, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई गर मिले कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। ये सच है कि मीना कुमारी में कमाल का सौंदर्य था, भला की खूबसूरती थी, लेकिन उनकी खासियत थी उनके चेहरे पर झिलमिलाते भाव। उनकी खासियत थी दर्द को अपने चेहरे पर लहर की तरह छा देना। जरा फिल्म दिल एक मंदिर का ये गाना सुनिए और जहन में याद कीजिए स्क्रीन पर झिलमिलाती मीना कुमारी को, जिसके दिल में है दर्द का तूफान।

कहते हैं कि अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों की वजह से मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि जिंदगी उनके हाथों से फिसलती चली गई। सन 1962 मीना कुमारी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 3 नॉमिनेशन मीना कुमारी को मिले। फिल्म आरती

0: है।
1: और फिल्म साहिब बीवी और गुलाम, जाहिर है कि कोई प्रतियोगिता थी ही नहीं, मीना कुमारी का मुकाबला खुद से था और साहिब बीवी और गुलाम के लिए उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1965 में आई फिल्म काजल।

लेखक और गीतकार गुलजार शायरी की वजह से मीना कुमारी के करीब आ गए थे। उनकी शायरी की दुनिया को गुलजार ने जाना पहचाना था। सन 1971 में जब बतौर निर्देशक गुलजार ने फिल्म मेरे अपने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका मीना कुमारी को सौंपी।

मीना कुमारी के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी पाकीज़ा। इसे बनने में कुल 14 साल लग गए, लेकिन फिल्म पाकीज़ा के जरिए पर्दे पर कमाल अमरोही और मीना कुमारी ने रचा एक तिलस्म।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, बस कुछ ही पल में।

0: तो पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त वंदना अर्चना का प्यार भरा नमस्कार जोहार। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करती हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आपसे ढेर सारी बातें होंगी, गीत संगीत होंगे, कुछ जानकारियों स्थानीय गतिविधियों पर भी नजर डालेंगे। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और इस गीत का आनंद उठाते हैं।

दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम वैसे ही जिए जैसे दूसरे लोग जीते हैं, क्योंकि जीने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। हमें वही तरीका जीना चाहिए जो हमें बेहतर लगता है या जिससे हमें सुकून मिलता हो। हमें उसी वैसे ही जीना चाहिए, इस बात की परवाह किए बगैर कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या कैसे देखते हैं या क्या कहते हैं। हमें ऐसे जीना चाहिए कि एक दिन हम जब आईना खुद को आईना में देखे तो हमें नजरें मिलाते वक्त ये लगना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी जी है, ना कि दूसरों की।

तो दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि क्यों मनाया जाता है विश्व स्तन पान सप्ताह और क्या है इस वर्ष का थीम और इसका महत्व। दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नवजात शिशुओं के लिए माँ के दूध पोषण और स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। स्तनपान शिशुओं के स्वास्थ्य और जीवन रक्षा को सुनिश्चित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। माँ का दूध नवजात

शिशु के लिए पहला टीका और सर्वोत्तम आहार है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी पोषण और सुरक्षा दोनों देता है। यह बच्चों को कई तरह के गंभीर संक्रमण और कुपोषण से बचाता है। जीवन के प्रारंभिक चरणों में माँ का दूध शिशु के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। साथ ही एंटीबॉडी से भरपूर यह दूध शिशुओं और को दस्त और निमोनिया जैसे आम बचपन की बीमारियों से भी बचाता है, जो विश्व स्तर पर शिशु मृत्यु दर को कम करता है। और दोस्तों, इस वर्ष का थीम है जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है इसे मजबूत करें। यानी स्तनपान का महत्व बच्चों के साथ साथ माँ के लिए भी फायदेमंद है। स्तनपान से प्रसव के बाद रिकवरी जल्दी होती है और स्तन कैंसर और ओवरी कैंसर का खतरा भी कम होता है। यानी स्तनपान कराने से माँ के स्वास्थ्य लाभ होता है और गंभीर रोगों का जोखिम भी कम होता है। माँ के पहले और गाढ़े पीले दूध को कोलोस्ट्रम से भरपूर एंटीबॉडी होती है, जो बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है और संक्रमण से बचाती है। साथ ही माँ और शिशु के बीच का बंधन भी मजबूत होता है। स्तनपात्र मात्र पोषण ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औषधि का काम करता है। अध्ययनों से पता चला है कि स्तनपान कराने वाली शिशुओं को कान का संक्रमण कम होता है। स्तनपान किफायती भी है और परिवार और स्वास्थ्य प्रणालियों का वित्तीय बोझ भी कम करता है। और 6 महीने के उम्र तक शिशु के पोषण का एकमात्र स्रोत है माँ का दूध। शिशु का ठोस आहार शुरू करने के बाद भी उसे स्तनपान से लाभ मिलता रहता है।

और आइए जानते हैं मौसम का हाल। आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज सूर्यास्त होगा संध्या 6:44 पर और कल सूर्योदय होगा सुबह 5:11 पर। और आज मौसम खुला है और हो सकता है शाम तक हल्की फुल्की बारिश होने का अनुमान है।

और आप सुन रहे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसी कौन कौन सी जो घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई।

कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1831 ईस्वी में जर्मनी द्वारा रूस पर युद्ध की घोषणा के साथ। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 ईस्वी में और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 ईस्वी में और लोकप्रिय संगीत चैनल MTV की शुरुआत हुई थी 1981 ईस्वी में।

ईरान में महिलाएं भी इमाम बनी साल 2000 में, और श्रीलंका ने प्रीमा दास स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में भारत को 25 रनों से हराकर एशिया कप जीत लिया, और जयसूर्या मैन ऑफ द सीरीज बने साल 2004 में।

साल 2005 में शहजादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को देश का नया शासक नियुक्त किया गया सऊदी अरब में। और जापान ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी शुरू की साल 2006 में।

और वियतनाम के हनोई शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारतीय दल के 6 सदस्यों ने 3 रजत पदक जीते साल 2007 में। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ने भारत के विशेष निगरानी समझौते को हरी झंडी दी थी साल 2008 में।

और आइए जानते हैं किन किन हंसियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। हिंदी के महान और प्रथम तिलिस्मी लेखक थे देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा 1913 ईस्वी में। विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जिनका भी निधन हुआ 1920 ईस्वी में। भारत के प्रसिद्ध तबला वादकों में से एक थे कंठे महाराज, जिनका भी निधन हुआ 1969 ईस्वी में आज ही के दिन। और भारत में जन्मे प्रसिद्ध बंगला तथा अंग्रेजी लेखक और विद्वान थे नीरद चंद्र चौधरी, जिनका भी निधन हुआ 1999 ईस्वी में। अली सरदार जाफरी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर थे, जिनका भी निधन हुआ आज के दिन यानी 1 अगस्त 2000 ईस्वी में। बेगम रिहाजा रसूल भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, जिन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कहा 2001 में। और हरकिशन सिंह सुरजीत भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कहा 2008 में। और भारतीय राजनीतिज्ञ थे और असम और मेघालय के राज्यपाल रहे भीम नारायण सिंह, जिन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कहा 2018 में आज के दिन। और भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनका संबंध समाजवादी पार्टी से था अमर सिंह, जिन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कहा 2020 में।

और आइए जानते किन किन हस्तियों का जन्म हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्र।

और सऊदी अरब के राजा शाह अब्दुल्ला जिनका भी जन्म हुआ 1924 ईस्वी में आज ही के दिन, और प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र जिनका जन्म हुआ 1939 ईस्वी में आज ही के दिन। गोवा के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार और आलोचक एवं निबंधकार थे दामोदर माउज जिनका भी जन्म हुआ 1944 ईस्वी में।

और उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनीतिज्ञ थे बच्ची सिंह रावत, जिनका भी जन्म हुआ 1949 ईस्वी में आज ही के दिन। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे अरुण लाल, जिनका भी जन्म हुआ 1995 ईस्वी में आज ही के दिन। और भारतीय मुक्केबाज रोहित टोकस, जिनका भी जन्म 1993 ईस्वी में आज ही के दिन। और फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी, जिन्हें सभी ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जानते थे, इनका भी जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में आज ही के दिन।

तो दोस्तों, कार्यक्रम में आगे चर्चा करते हैं बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव। दोस्तों, अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी लापरवाही से हमारी तबीयत बिगड़ जाती है और इस मौसम में खान पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और खासकर दोस्तों, बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, इसलिए इस मौसम में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत होती है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम इस मौसम में भी इन बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि इस मौसम में बारिश की वजह से पानी के जमाव से मच्छरों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए घर के आसपास पानी हमें नहीं जमने देना चाहिए। साथ ही कूलर, गमले या पुराने टायर में पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी है तो उसे तुरंत खाली कर दें, क्योंकि इन जमे हुए पानियों में मच्छर पनपने का अधिक चांसेस रहता है और पनपता है। इसी वजह से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आसपास घर नालियाँ जो होती हैं उन्हें भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए और समय समय पर फिनाइल वगैरह या ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जरूर करना चाहिए। साथ ही पानी की टंकियों और पीने का पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। और दोस्तों, शाम के वक्त हमें पूरी बांह वाले कपड़े पहनने चाहिए, फुल पैंट या ट्राउज़र पहनने चाहिए, जिससे कि हम मच्छर के संपर्क में कम से कम आए। साथ ही साथ त्वचा या शरीर पर हमें मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे लगाना चाहिए। बच्चे खास करके जब शाम के वक्त खेलने बाहर जाते हैं तो उन्हें क्रीम या स्प्रे जरूर लगाना चाहिए, ताकि वो मच्छर से बच सके। साथ ही सोते समय मच्छरदानी का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे मच्छर हमें ना काट सके। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी से हम बच सकते हैं। साथ ही घर के खिड़कियों पर जाली या नेट लगाना चाहिए, जिससे भी मच्छर घर में आने से रोका जा सकता है। खास करके इस मौसम में जो होता है, पीने का पानी अगर दूषित हो तो हम बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए इस मौसम में हमेशा हमें उबला हुआ और फिल्टर किया हुआ ही पानी पीना चाहिए। साथ ही जो खाना होता है वो ताज़ा और हमेशा ढका हुआ ही होना चाहिए। खासकर जब हम खाना बनाएं तो उसे हमें ढक कर रखना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का मच्छर या मक्खी ना हो। और इस बरसात के मौसम में ऐसे तो सभी अपने घर की सफाई पर ध्यान रखते हैं और सभी अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, फिर भी इस मौसम में हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारा घर साफ़ सुथरा स्वच्छ रहे, तभी हम तंदुरुस्त रह सकेंगे।

और आइए जानते हैं स्थानीय गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। आईसीट विश्वविद्यालय के रोजगार मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़ और हुआ प्रतिभाओं का चयन। नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल में बालिका वर्ग की इंटर हाउस बास्केटबॉल प्रतियोगिता उत्साह अनुशासन और खेल भावना के साथ संपन्न हुई। गांधी हाउस ने जीता इंटर हाउस बास्केटबॉल का खिताब और मैरी बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और दारू में विश्व हिंदू फाउंडेशन व पे राइज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त कार्यालय का किया गया उद्घाटन और महिलाओं को स्वरोजगार परीक्षण से बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। और भगवत गीता पाठ का किया जाएगा आयोजन, झील सेंटर समय होगा 6:30 बजे। और महावीर स्थान मंदिर में भी पूजा पाठ होगा, समय होगा 7:00 बजे। और स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत शुक्रवार को ऐतिहासिक पल का गवाह बनी। पहली बार हृदय प्रत्यारोपण के लिए डोनर का धड़कता दिल लेकर वंदे भारत ट्रेन के जरिए सूरत से अहमदाबाद महज 2 घंटे 35 मिनट में पहुंचा और एक हृदय रोगी को जीवन देने की रेल यात्रा का इतिहास में दर्ज हुआ।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते अपने मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: और इनकी आवाज के हम सब दीवाने रहे हैं। हमारे बीच हैं पद्मश्री सुशील दोषी। ये है इस बातचीत का पहला भाग। आइए स्वागत करते हैं सुशील जी का।
2: धन्यवाद यूनुस और सभी श्रोताओं को एक बार फिर से नमस्कार। ये आवाज़ तो आप बरसों कमेंट्री में सुनते रहे होंगे और मुझे खुशी है कि एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। जीवन की कहानी की यात्रा किस तरह गुजरी, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी तो जिगर थाम कर बैठिए, बहुत लंबी बातचीत होगी अब।
3: क्या बात है, क्या बात है। मैं ना सर बहुत रोमांचित हूँ और एक चीज़ और है कि आपके सामने बैठने पर थोड़ा घबराया हुआ भी हूँ कि इतना विराट और लंबा अनुभव आपका रहा है। मुझे लगता है यात्रा इंदौर से शुरू करते हैं, अपने बचपन के बारे में बताइए।
2: नहीं देखिए, वैसे तो गरीब परिवार से हम थे, 15 रुपए महीने के मकान में किराए से रहते थे।
3: कौन सा मोहल्ला था वो?
2: वो इतवारिया बाजार, जिसे अब हुकमचंद मार्ग इंदौर
3: जी
2: कहते हैं, वहाँ रहते थे। और 4 भाई हम लोग और माता पिता, मैंने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी संघर्षरत थे। वहाँ से शुरुआत की यात्रा और टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़े
3: जी जी,
2: मास्टरों की रोज मार खाई
3: जी।
2: और मुर्गा बने।
3: हाँ,
2: लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दिल में इच्छा हो ना तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और माता पिता

0: का आशीर्वाद रहा तो फिर आप सही दिशा की तरफ प्रवृत्त भी हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने कहा कि परिवार जो है वो थोड़ा अभावों के रास्ते पर था, और जैसे स्कूलों में आपने पढ़े, सब आज के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है, मास्टर जी कैसे मुर्गा बनाते हैं। ये जो बचपन था, इस बचपन में किताबें बहुत सारी थी, मैंने ये जाना है कि आप लाइब्रेरीज में ब्लेड लेके जाते थे।
0: अब क्या बताएं, देखिए उस समय पैसे तो थे नहीं
1: जी,
0: तो क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी, तो हम करते ये थे कि लाइब्रेरीज जाते थे और बहुत कम बड़ी पत्रिकाओं में
1: जी
0: फोटो आते थे। एक पत्रिका में कब बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर का किसी का फोटो, और मैं एल्बम में क्रिकेटर्स के फोटो इकट्ठे किया करता था
1: जी,
0: और पैसे थे नहीं कि पत्रिकाएं खरीद सकें। तो मैं और मेरा एक दोस्त है, विनय उसका नाम था, मेरे साथ पढ़ता था, तो हम दोनों जाते, ब्लेड ले जाते और चुपके से वो फोटो काट कर घर ले आते।
1: वाह,
0: एक दिन पकड़े गए।
1: अरे बाप,
0: पकड़े गए तो मेरे दोस्त को आप ये समझिए कि उसने दो चपत लगाई और अब कहा कि इस तरह के काम करते हो, शर्म नहीं आती। तो हम वापस आ गए और बड़ा छोटा मुंह हो गया। लेकिन देखिए पुराने दोस्त कैसे होते हैं, उसने ये कहा कि यार घर पर मत बताना कि आज हमको चपत पड़ी है, क्योंकि घर पर बताएंगे तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये कल से नहीं कर पाएंगे
1: जी।
0: तो देखिए कई बार मैं सोचता हूँ कि आज जब पद्मश्री मिल गया या जिंदगी में आप हम व्यावसायिक तौर पर इतने आगे बढ़ गए, इतना नाम कमाया, लोग इज्जत कर रहे हैं, शोहरत प्राप्त हो गई, सब कुछ है, लेकिन हम उस दोस्त को कैसे भूल सकते हैं जो कि पद्मश्री मिलने के बाद भी उसका हक भी तो कुछ है उस उपाधि पर, जिसने हमें ऐसे वक्त जबकि दुनिया हमारे साथ नहीं थी वो हमारा साथ देने को तैयार थे। तो ऐसे ऐसे दोस्त हुआ करते थे
1: जी,
0: बचपन की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी मुझे भावुक कर देती हैं
1: जी। बहुत प्यारी बात है, इंदौर बहुत प्यारा शहर है, संस्कारों वाला शहर है, पारंपरिकता और आधुनिकता को साथ लेके चलता है। जिन दिनों में आप पढ़ रहे थे, क्रिकेट मैच के बारे में जानने का जरिया सिर्फ अखबार थे, कमेंट्री अंग्रेजी में सुना करते थे।
0: बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हैं और गाने गुनगुनाते हैं ना
1: जी,
0: मैं बाथरूम में जाता था तो कमेंट्री गुनगुनाना था। मतलब आप समझिए कि लोग अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, हिंदी में तो आती नहीं थी। FPS सिस्टम का खेल, यानी कि फुट पाउंड सेकंड 22 यार्ड से जो खेल शुरू हुआ, लोग कहते थे हिंदी का इसमें क्या काम, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अंग्रेजी में ही कमेंट्री करते थे और उनकी शैली में, जॉन ऑर्लट हो, एलन मैकगिलवरी हो, या ऐसे बड़े बड़े कमेंटेटर्स जिनके हम नाम जानते
1: हैं, उनकी बैरिटोन एकदम,
0: हाँ, उनकी मोटी आवाज में वैसे ही निकाल कर मैं वैसे ही कमेंट्री करता था, लोग बड़े प्रभावित होते थे। और स्कूलों में भी कोई मैच चलता था ना, मैं एक झाड़ के नीचे बैठकर कमेंट्री करने लग जाता था।
1: वाह,
0: तो ये एक वहां से शौक हुआ। और बचपन से मुझे पता नहीं था कि मैं कमेंटेटर बनूंगा
1: जी,
0: लेकिन कहीं से कहीं बुनियाद जो पड़ी ना मेरी, शायद वहीं से पड़ी होगी, क्योंकि वही चीज आगे जाकर विकसित हो गई।
1: बिल्कुल, तो पिताजी का क्या रवैया था?
0: नहीं देखिए, गरीबी के बावजूद, देखिए मैं पढ़ने में सबसे कमजोर, दुबला पतला, 48 किलो, जब मैं कॉलेज में भी जाता था ना, 48 किलो ही वजन था। तो मेरे प्रति उनको एक अलग से ज्यादा प्यार था। हमारे दूसरे तीन भाई हैं, तीनों भाई एमटेक आईआईटी से
1: जी जी,
0: मतलब इतने विद्वान और पढ़े लिखे, हमेशा प्रथम श्रेणी में आने वाले, मैं सप्लीमेंट्री लाकर पास होने वाला। उसके बावजूद भी वो इस कारण पिताजी प्यार करते थे कि ये कमजोर है, इसको हमारी मदद की जरूरत है।
1: ओके,
0: और दूसरी बात ये कि उनको लगा कि ये अगर इसको हिंदी में और इसमें ज्यादा शौक है, तो उनको लगा कि मैं क्रिकेट की तरफ प्रवृत्त हूं, तो क्रिकेट मेरी किताबों में वो भी एल्बम में चिपकाते थे खुद बैठकर।
1: अरे गजब,
0: और बड़ी मदद की। और उस समय तो पता नहीं था, लेकिन एक बार मुझे याद है कि 1959-60 में ऑस्ट्रेलिया की रिची बेनो की टीम भारत आई।
1: हाँ।
0: वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी रिची बेनो की, वो विश्व विजेता टीम थी।
1: बिल्कुल।
0: और दुनिया में उसका कोई जोड़ी नहीं था, बड़े बड़े खिलाड़ी, रिची बेनो, लिंडवाल और नॉर्मन ओनील, नील हार्वे जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके फोटो में एल्बम में इकट्ठे किया करता था, तो वो आए हुए थे। और मैंने पिताजी से जिद पकड़ी, मैं 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था
1: जी,
0: मैंने जिद पकड़ी कि मुझे बम्बई टेस्ट मैच देखना है। और पिताजी पता नहीं क्यों मैं पिता होता तो कभी भी अपनी बेटे की ये बात स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो उन्होंने कहा कि बेटे की जिद पूरी करनी है, तो वो मुझे बंबई ले गए टेस्ट मैच दिखाने।
1: इंदौर से बंबई ले गए
0: पैसे थे नहीं, जैसे तैसे टिकट कैसे जुगाड़ किया होगा, यहां से बंबई, बंबई

0: रहते थे जब बम्बई जाने का, बम्बई गए, उनको पता नहीं था कि अगर 50,000 लोग बाहर प्रतीक्षा करते हैं तो 50,000 लोग अंदर भी बैठे हैं और 50,000 लोग अंदर घुसने की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। तो उनको लग रहा था कि बम्बई जाएंगे, टिकट दिलाएंगे। वो पिता थे, उनको ये बेटे में दिलचस्पी थी, क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो मुझे ले गए और वहां जाकर हम पिता पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम
1: जी जी,
0: के चक्कर काटते रहे और टिकट का जुगाड़ हुआ नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई
1: जी।
0: उसने कहा कि अरे मैंने आपको पहचान लिया है और जुगाड़ नहीं हुआ क्या? तो बाबूजी कहता था पिताजी को, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम बहुत दूर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, तो जैसे तैसे ये मैच देख ले। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, चाय पान के समय जो बाहर आता है ना रेला, चाय पीने और मूंगफली खाने, तो मैं जब वापस जाएगा रेला तो मैं इस बच्चे को अंदर ठेल दूंगा, लेकिन आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा।
1: अरे बाप रे।
0: अब देखे आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहे, मैं 13 साल का था, इतनी संवेदना भी नहीं थी कि पिताजी बाहर खड़े हैं
1: जी जी।
0: मैं अंदर फुदकता हुआ चला गया खुशी में,
1: गजब।
0: और अंदर जाकर जो दृश्य देखा, मैंने देखा 50,000, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है, कोई भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, कोई तरह तरह के फोटोग्राफ्स लेके ऊंचे दिखा रहा है, प्ले कार्ड्स दिखा रहा है, और ढोल मजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की ड्रेसेस पहनकर लोग खड़े हैं। तब मेरी निगाह पड़ी कमेंट्री बॉक्स पर।
1: वाह।
0: तो मैंने किसी से पूछा कि यार ये कमेंट्री कौन कर रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा बॉबी तेलियारखा और विजय मर्चेंट यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं,
1: लेजेंड लोग।
0: मैंने जगह देखी तो मेरे दिल में एक हुक सी उठी कि यार क्या जगह है, राइट इन लाइन विद द विकेट, बिल्कुल विकेट की लाइन में है, बर्ड्स आई व्यू, पक्षी जैसे मैच देख रहा है, सीधी लाइन में स्विंग और सीम और सब कुछ दिखाई दे रहा है, गजब की जगह। मन में एक विचार आया कि क्या कभी यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। और देखिए जंगली सपने भी कभी कभी कैसे सच होते हैं, कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोन स्टेडियम से, उसी कमेंट्री बॉक्स से सन 1972-73 में तब किया जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई।
1: 12 बरस लग गए।
0: तो 12 बरस लग गए। आप देखिए कि कैसे ये काम हो। इसलिए जो कलाम साहब कहते हैं ना कि सपने देखो तो खुली आंखों से देखो,
1: वाह वाह,
0: अगर
1: वा,
0: बंद आंखों से सपने देखोगे तो सपना टूटने के बाद वो बिखर जाएगा, लेकिन जब आप खुली आंखों से सपना देखोगे तो उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो शायद वही बात थी कि वो सपना मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स का, वो जाकर अब पूरा हुआ। अब इसमें दो बातें हुई साहब, देखिए यूनुस जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि खुली आंखों से सपना देखा, और दूसरी बात उस पिता का सहयोग जो 90 मिनट तक बाहर खड़ा रहा और वापस आने की प्रतीक्षा में इसलिए उसी जगह खड़ा रहा जो कि कहीं बच्चा गुम न हो जाए वापस आने पे, इतनी भीड़ भड़क्के में
1: जी जी,
0: मुंबई के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये वापस आएगा तो भीड़ में गायब हो जाएगा, तो वहीं खड़े रहे। और जब मैं वापस आया तो मुझसे ज्यादा खुश मेरे पिताजी थे,
1: कितनी
0: कि चलो बच्चे ने मैच देख लिया। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, माता पिता, जो कि आपसे किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहते, वो चाहते हैं कि उनसे भी बेहतर आप करें, ऐसे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो जब भी आप बड़े हो जाएं, कॉलर ऊंचे मत करिए, माता पिता को कभी मत भूलिए।
1: क्या सुंदर बात कही। और आपने कहा कि पिताजी को आप बाबूजी कहा करते थे, तो मुझे गुलजार साहब का गाना याद आया, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे प्यारे बाबूजी थे, एक था बचपन, तो इस गाने की यहां पर जगह बनाते हैं।

0: सुशील जी, 1959-60 में हम हैं, जहां पर आप ब्रेबोर्न स्टेडियम में 90 मिनट मैच देखते हैं और पिताजी बाहर इंतजार करते हैं और आप एक रोमांच लेकर बाहर लौटते हैं। यहां से आगे की कहानी?
1: नहीं, उसके बाद तो क्या, फिर वक्त बीतता गया, क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ती रही जैसे आपने कहा,
0: और पढ़ाई साथ में चलती,
1: पढ़ाई साथ में चलती रही। विज्ञान का विद्यार्थी था, मेरा हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा
0: जी,
1: लेकिन अपने खुद की खुशी से मैं बड़े बड़े उपन्यास, यानी कि जयशंकर प्रसाद का छायावाद, महादेवी वर्मा है ना, या सुमित्रा नंदन पंत, इन सबका खूब अध्ययन किया मैंने, और धर्मवीर भारती जी की किताबें पढ़ी, सारे उपन्यास उनके पढ़े, गुनाहों का देवता, ये सब महादेवी वर्मा की सारी किताबें पढ़ डाली, तो ये तमाम चीज़ों से मेरी हिंदी बराबर बनी रही। हिंदी के प्रति मेरा एक विचित्र तरह का प्रेम बना रहा, एक रिश्ता बना रहा, मुझे लगा कि हिंदी मुझे खींच रही है, तो यहाँ से मेरी हिंदी की बुनियाद पड़ी।
0: और यहाँ बीच में थोड़ा सा रुकूंगा, आगे चल के धर्मवीर भारती से एक नाता बना, उसका जिक्र थोड़ा सा फ्लैश फॉरवर्ड करके करते हैं।
1: हाँ जी,
0: जब वो धर्मयुग के संपादक थे।
1: नहीं बिल्कुल, धर्मयुग में मैं जब लिखना शुरू किया 1968-69-70 के आसपास, तब उनको लगा कि हिंदी, देखिए धर्मवीर भारती जी से हमारा कोई रिश्ता तो था नहीं, उनको लगा कि मुझे उस तमाम व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए, उस हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए जो हिंदी का काम कर रहा हो। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना थी, तो जसदेव सिंह और मुझे उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया, उन्होंने काफ़ी लिखवाया भी, तब धर्मयुग घर घर में धर्मयुग जाता था, प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी, तो उन्होंने हमसे काफ़ी लिखवाया। और बाद में जब 1979 का, जिसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, जब वापस आया ना, उन्होंने मुझे गले लगाया, घर बुलाया और कहा कि भाई आज तुमने हिंदी का नाम रोशन कर दिया।
0: वाह वाह,
1: तो ये जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि धर्मवीर भारती जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मिलने को लोग लालायित होते थे, वो मुझे स्वयं घर बुला रहे हैं, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल, तो हम वापस स्कूल के जमाने में चलते हैं, जहां आप धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत वगैरह को पढ़ रहे हैं, और हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रुचि है, लेकिन धारा विज्ञान के छात्र की है, और

0: था, इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। हाँ, उस समय क्या होता था कि गरीबी के दिन थे, मैंने आपको बताया, किताबें थी नहीं, पैसा था नहीं, हमको लगता था कि भाइयों के जो स्लाइड रूल है, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो कपड़े हैं, वो हमारे काम आ जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी था कि पैसे खर्च नहीं होंगे और ये कमजोर है तो बड़े भाई पढ़ा भी देंगे इनको, और उन्होंने पढ़ाया भी खूब, मेरी खोपड़ी में बहुत कुछ घुसाने की कोशिश की इंजीनियरिंग की, जैसे तैसे मैं पास भी हुआ। लेकिन ये समझिए कि पांचों साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ मैं, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, लेकिन इंजीनियर मैं बन गया। शक्ल सूरत से मैं लगता नहीं कि पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं इंजीनियर हूं।
1: जी जी।
0: तो इंजीनियरिंग पढ़ने से एक बात हुई कि मुझे तकनीकी चीजें समझने में बहुत सहूलियत हुई। क्या होता है, जो शिक्षा होती है ना, ये आपके दरवाजे खोलती है।
1: बहुत सही।
0: तो ये आपको चीजों को ग्रहण करने में मदद देती है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से क्या हुआ कि गेंद का एरोडायनामिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया, कि कोई गेंद स्विंग होती है तो क्यों होती है, सीम के सहारे कट क्यों होती है, सीम पर पड़ती है तो उसका व्यवहार कैसा रहता है, पिच में नमी रहती है तब क्या होता है, तमाम चीजें समझने में बहुत आसानी हुई। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भले ही मैं बहुत बड़ा विद्वान न रहा, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई। और दूसरी बात ये कि जो आसपास के दूसरे कमेंटेटर्स होते थे ना, उन पर दबदबा रहता था कि भाई ये तो इंजीनियर हैं,
1: वाह,
0: ये गलत बात नहीं करेंगे। तो ये भी एक जरा एहसास रहता था मन में
1: जी,
0: कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं
1: जी। आपके बचपन किशोर युवा वाले दिनों में इंदौर क्रिकेट का एक गढ़ था, कुछ बड़े क्रिकेटर वहां से आते हैं, उनसे किस तरह का कनेक्शन रहा या देखना रहा उनको?
0: बिल्कुल ठीक है, आपने कर्नल सी के नायडू साहब, उनसे मेरी मुलाकात, पद्मभूषण, जो अकेले पद्मभूषण क्रिकेट के उस समय, पहले वाले पद्मभूषण उस समय, तो उनके घर पे मैं काफी जाता था, उनके परिवार से काफी रिश्ता था। और उनका आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था जो स्पोर्ट्स एंड पास टाइम में कवर स्टोरी के रूप में छपा था उस समय, इलस्ट्रेटेड वीकली में भी मैंने उनके बारे में लेख लिखा था। तो मैं हिंदी में लिखता था, मेरे बाबूजी जो थे वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। अपने समय के भी काम थे, जिस गांव से वो आते थे, प्रतापगढ़ राजस्थान से, जहां मेरा जन्म हुआ, लेकिन बाद में मैं इंदौर आ गया, लेकिन वहां पर कोई अकेले भी काम रहे होंगे, तो उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि उसका मुझ पर भी बहुत प्रभाव पड़ा कि छोटे वाक्य, ग्रामेटिकली सही वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। उनका हमेशा यह कहना था कि हिंदी भी अगर बोलो या लिखो तो व्याकरण की दृष्टि से सही बोलो या लिखो। ये चीज मेरे मन में गहरे तक समा गई थी, और इसी कारण मैं जब भी लिखा या बोला ना, जब भी मैंने कमेंट्री भी जब की, तो मैंने व्याकरण को बड़ा ध्यान रखा, और इसी कारण मेरी हिंदी, जो लोग कहते हैं, काफी शुद्ध रही। तो अब लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि शायद शुद्ध रही होगी
1: जी। अपने बचपन के जमाने में फिल्मों से कैसा कनेक्शन था? क्योंकि इंदौर में मुझे याद है कि मैं एक दिन सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने पूरी टॉकीजों का बताया, ये यहां थी, यहां अंग्रेजी फिल्में लगती थी, यहां हिंदी फिल्में लगती थी, यहां मॉर्निंग शोज होते थे। आपका फिल्मों से कैसा?
0: नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत। मैं तो शाम को 8-9 बजे के सेकंड शो देखने ही चला जाता था,
1: कुछ
0: मतलब पिक्चर तो एक आदत की तरह हो गया था कि कोई भी, याद, बाद में जब शादी हो गई तब भी पत्नी को भी काफी शौक था फिल्मों के प्रति, तो हम लोग शाम पढ़ते ही हमारे कदम ऐसा लगता था कहीं जाकर देखें, ज्योति टाकेज या प्रकाश टाकेज या फिर एलोरा टाकेज, जहां अब तो रहे नहीं टाकेज, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं, लेकिन वहां जाकर फिल्में देखने का बहुत शौक रहा। और सलीम साहब से तो मेरी मुलाकात भी हुई
1: जी,
0: कई बार मुलाकात हुई, एक इंदौर में एक समारोह में साथ में मिले थे, और मुझे बहुत बहुत जीवंत व्यक्ति। जावेद साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सलीम साहब से जरूर मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई। और एक बार मुंबई शहर में भी करसन घावरी साहब के बड़े मित्र हैं, जो पुराने क्रिकेटर हैं, तो जब एक बार कमेंट्री के लिए आया तो घावरी साहब ने कहा कि यार अपन लोग बैठते हैं, सलीम साहब भी याद कर रहे हैं, इंदौर का लड़का कमेंट्री करने के लिए आया है। तो सलीम साहब के, तो और क्या दिलकश आदमी,
1: वाह,
0: मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, और बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे साथ बैठकर उन्होंने गाने भी गाए,
1: वाह वाह,
0: और क्या आवाज उनकी, बिल्कुल लंबा खींचते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता कहीं गला फटता ही नहीं उनका
1: जी।
0: वो दुनिया के रखवाले वाला गाना उन्होंने सुनाया था,
1: क्या
0: तो वो कितना उसमें लंबी खींच जो आती है ना तान, वो पूरा उन्होंने वैसा का वैसा सुनाया।
1: तो दो इंदौरी लोग मिल गए थे,
0: बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि इंदौरी लोग जब भी मिलते हैं ना आपस में, मालवा के लोग, इंदौर भोपाल के लोग,

0: तो जब भी
1: आप मुझे शामिल कर रहे हो
0: तो बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि कोई घर के लोग
1: जी
0: मिल गए और इनके साथ खूब बात करनी चाहिए और ऐसी भाइयों की एक बढ़ोतरी हो गई है भाइयों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब से ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इस मुलाकात की याद के नाम वो दुनिया के रखवाले सुनते हैं।

0: सुशील जी, बहुत आनंद आ रहा है आपके बचपन के गलियारों में हम घूम रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा लगती रही, आप एक बहुत नामी क्रिकेट कमेंटर रहे और हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के संस्कार जैसे बुनियाद आपने गढ़ी है। आपने स्वयं कितना क्रिकेट खेला है ये जानना मेरे लिए बहुत दिलचस्प।
1: देखिए, स्कूल में टीम में था, स्कूल में जाकर क्रिकेट खेलता था। वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ इंदौर में, वहाँ जाकर खेलता था। और उस समय गरीबी के दिन थे, मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट का बल्ला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना शौक था कि क्रिकेट खेला। इतना समझ में आया कि जब मिड ऑफ की जगह मिड ऑन पर गेंद जाती है तो होता क्या है, बल्ला जो बल्ले का हैंडल हाथ में घूम जाता है, इस कारण मिड ऑफ का मिड ऑन में जाता है। तो ये तमाम चीजों की समझ जब आप थोड़ा बहुत खेलते हैं ना तो आपको समझ में आता है।
0: यस,
1: तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत खेलें। ऐसा नहीं होता, सब कुछ सैद्धांतिक रूप से काम नहीं होता है इसमें, थोड़ा महसूस करते भी आना चाहिए कि कोई चीज कितनी मुश्किल या कितनी सरल क्यों होती है। तो ये एक फायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट का खेल जो है ना, ये एक, अगर आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाई डिग्री ऑफ कॉमन सेंस अगर आप में है या क्रिकेटिंग सेंस आप में है, तो फिर आप इस खेल की बारीकियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आजकल के कई क्रिकेटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं रहती, वो कमेंट्री करते हैं तो वो कहने की कोशिश करते हैं कि साहब क्रिकेट तो हमको ही आता है, ये सब जो है ना बाकी के लोग। लेकिन ऐसी बात नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं इसलिए उनको पता नहीं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत मामूली विज्ञान है जो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं।
0: जी,
1: तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप अपनी विधा पर ध्यान दीजिए और साथ ही भाषा पर भी ध्यान दीजिए।
0: yes.
1: और ऐसा मत करिए कि हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, देश की भाषा है, अगर आप बोल रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुद की भाषा है।
0: बिल्कुल.
1: इसको सही बोलिए, और सबसे बड़ी बात व्याकरण की दृष्टि से सही बोलिए। क्रिकेट खेली नहीं जाती, क्रिकेट खेला जाता है। विकेट गीली नहीं होती, पिच गीला होता है। तो ये तमाम चीजें अगर आप सही ढंग से नहीं बोलेंगे तो देश की भाषा खराब होती है।
0: yes.
1: और मैं तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये कहता हूं कि भाई आपने देश के क्रिकेट की बागडोर या उसके राइट्स, आपने अधिकार बेचे हैं, भाषा को खराब करने के अधिकार नहीं बेचे हैं। तो ये एक देश की भाषा के प्रति उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कोई विदेशी चैनल से इसका मतलब ये नहीं है कि देश की भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखें। और क्रिकेटर्स का तो बड़ा स्वागत है, अगर वो क्रिकेट कमेंट्री के क्षेत्र में उभर रहे हैं या आ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूं कि, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम रहती वो बता सकते हैं। जैसे ड्रेसिंग रूम में क्या वातावरण चल रहा होगा, कप्तान क्या सोच रहा होगा, तीन स्लिप और एक गली रखे थे, शॉर्ट थर्ड मैन क्यों रखा है, शॉर्ट फाइन ले का फील्डर अंदर रखा है तो बॉलर को लेग साइड में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा चौका हो जाएगा। ये तमाम चीजें हमसे पहले वो समझते हैं, तो अपनी समझ को बरकरार रखें, लेकिन साथ ही भाषा के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए। देश की भाषा खराब करने का, ये नहीं समझे कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लेंगे चल जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में कभी आपने सुना है कि आई इज गोइंग,
0: नहीं नहीं,
1: या फिर दे इज कमिंग, तो आप कितने भी बड़े आदमी हो लोग आपको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में हर तरह की भाषा चल रही है, तो ये ठीक सहन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो इसको सहन कर रहे हैं ना उनका भी अपराध उतना ही बड़ा है, क्योंकि गलत चीज को और खास करके भाषा के साथ अन्याय को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत बड़ी और जरूरी बात कही है। अब मैं उस जगह पर आ रहा हूं जहां पहली

0: कई बार हिंदी में कमेंट्री की परंपरा शुरू होने का ऐलान होता है और सुशील जी उस रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करते हैं।
1: सच बात है, आपने तो भावुक कर दिया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल में पढ़ता था
0: जी,
1: और उस समय खबर आई कि पहली बार हर जगह से हिंदी कमेंट्री जरूरी है, और तब रणजी ट्रॉफी मैचों की भी हिंदी कमेंट्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान का मैच था, और 15 दिन पहले कहीं से घोषणा हुई कि वो हिंदी में कमेंट्री होनी है। बड़ी ढूंढ मचाई, सबने कहा कि बेवकूफ़ी की बात है, हिंदी जो FPS सिस्टम का खेल 22 यार्ड्स से जो शुरू होता है उसमें हिंदी का क्या काम। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, तो मैं पहुंच गया वहां पर स्टेशन डायरेक्टर के पास कि
0: आकाशवाणी इंदौर
1: में। हाँ, मैं समझिए कि ये मामूली रहन सहन था, और मैं वहाँ पहुंचकर मैंने स्टेशन डायरेक्टर से कहा कि मैं हिंदी में कमेंट्री कर सकता हूँ और आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मुझे देखा, मुझे याद है उनकी मुस्कुराहट अभी भी याद है
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट, क्योंकि पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। और उनका सोच बिल्कुल सही था। उस समय कमेंटेटर्स 50, 55, 60 साल के होते थे
0: और आप 18 के थे।
1: मैं 18 साल का था, तो तजुर्बे का थोड़ा लेकर तो आइए ज्ञान, उसके बाद फिर बात करिए। तो वो ठीक कर रहे थे, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। मुझे अपमानजनक भी नहीं लगा, क्योंकि आदत थी, गरीब थे तो शायद अपमान की आदत थी। तो वापस चले गए, कोई बात नहीं, टहलते हुए वापस आ गए। फिर वो दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री होनी थी, कोई मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक पागल सा लड़का आया था जो कमेंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाकर पूछते हैं क्या वो कर सकता है। तो मुझे ढूंढकर फिर बुलाया, तो मैं गया वहां पर और उन्होंने कहा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए जरा। अब मैं तो धारा प्रवाह अंग्रेजी में करता ही था, तो मैंने कहा किसकी शैली में बताऊं, जॉन ऑर्लॉट की शैली में बताऊं, एलन मिगलबरी की शैली में बताऊं, या ब्रायन जॉनसन की शैली में बताऊं। तो बोले अच्छा करके तो बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में तीनों अलग अलग तरह की शैली में कमेंट्री करके बताइए। वो लोग इतने प्रभावित हुए, यार क्या गजब कमेंट्री करते हो तुम तो, लेकिन एक काम करो कि हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। अब मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने हिंदी में कुछ करने की कोशिश की, अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, किसी की सुनी ही नहीं थी कभी, अच्छा हुआ नहीं सुनी थी, अगर सुनता तो शायद किसी की नकल करता, क्योंकि इतना बुद्धिमान तो था नहीं मैं, कोई नकल करने को मिल जाती तो नकल करता मैं। लेकिन जब नकल करने को नहीं मिली तो फिर अकल लगानी पड़ी।
0: क्या बात।
1: तो उसमें यह हुआ कि फिर कमेंट्री की, और उन्होंने कहा कि नहीं ये चलो चला तो लेगा ये लड़का काम, तो मैं कमेंट्री की, और कमेंट्री की तो ये समझिए कि खाली प्याले में एक तूफान सा आ गया। लोगों ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या हो गई, किसी ने कहा कि ये जिंदगी भर कमेंट्री सीखें तो भी कमेंटेटर नहीं बन सकते, और मैं उन्हें दोष नहीं देता, शायद अच्छी नहीं की होगी निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी कम थी और परिपक्वता भी नहीं थी, लेकिन कुछ था जो स्टेशन डायरेक्टर को प्रभावित कर गया। उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये हुआ ना, इतनी ज्यादा आलोचना हुई, तो पिताजी नाराज हो गए कि देखिए अपने पास पैसा तो है नहीं और अब तुम नाम के बजाय बदनामी ज्यादा मोल ले रहे हो, या तो गंभीरता से काम करो और सोचो, अच्छा काम करो, क्रिकेटर करता क्या है उसके व्यवहार की तरफ दृष्टि डालो, उसके हाव भाव, उसका चाल कैसी चलती, क्या करता है स्ट्रोक खेलते वक्त, ये सब सोच के फिर हिंदी में सोचो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो, अंग्रेजी कमेंट्री का भूत अपने सिर से निकालो, और फिर अगर करना हो दिल से महसूस करके दिलों को छूने की कोशिश करो। जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है खिलाड़ी, मैंने सोचा कि पहले शॉर्ट पिच गेंद आती है, ऑफ स्टंप के बाहर आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए।
0: वाह वाह।
1: ऐसा जब सोचा ना तो मैंने देखा कि ये तो एक वाक्य भी बन गया,
0: रिदम आया,
1: शैली भी बन गई, शैली मतलब जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की शैली बन जाएगी। आज मैं 4 वाक्य बोलता हूं, लोगों को पता चल जाता है कि कमेंटेटर कौन है ये। तो ये जो पहचान बनी ना, इस कारण बनी कि हिंदी में मौलिक रूप से मैंने सोचना शुरू किया, और इसका ही फल है कि आज हिंदी में जितनी भी भाषा, जितनी शब्दावली बहुत सारी जो चल रही है, जैसे कि कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए मैं शंका का गलियारा मैं कहता था, ये किसी ने भी कभी सोचा नहीं था।
0: बिल्कुल,
1: कई इस तरह के शब्द जैसे अपनी नजरों के

0: ठीक नीचे खेल रहे हैं, तकनीकी शब्द लेकिन बिल्कुल सरल हिंदी में, तो बिल्कुल तकनीकी रूप से बिल्कुल सही खेल रहे हैं, नज़रों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, तो ये जो सिर बिल्कुल स्थिर रख रहे हैं जब खेलते हैं, ड्राइव करते हैं,
1: सीमा रेखा,
0: तमाम चीजें, ये सब तकनीकी चीजें हिंदी में कभी थी नहीं।
1: आपने सीमा रेखा जैसा शब्द भी गढ़ा।
0: क्यों याद दिलाते हैं। मेरी पत्नी का नाम रेखा है।
1: अच्छा,
0: तो क्रिकेट में तो उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि पहले मैं बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए ऐसा बोलता था। मैंने सोचा कि बाउंड्री लाइन भी क्यों बोलूं। सीमा रेखा, इसका हिंदी में अनुवाद करो, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के। ये जब बोला तो पत्नी ने आड़े हाथों ले लिया घर में आते ही।
1: अच्छा,
0: बोले रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन है।
1: क्या बात है, शानदार बात है। यहां ना एक गाने की जगह बन रही है, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, गाना थोड़ा आगे करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुझे समझ में आई कि आपने अंग्रेजी में कमेंट्री करके सुनाई थी, मैं वो थोड़ा सा सुनना चाहता हूं।
0: अब क्या वो इमेजिनरी कमेंट्री करते थे कि
1: जी जी, तो किसकी शैली में है वो भी बताइएगा।
0: नहीं, जॉन ऑर्लेट बोलते थे जैसे कि फ्रेडी ट्रूमन कमिंग इन फ्रॉम द वेक्सल लैंड कम्स इन एंड बोल्स टू सुनील गावस्कर एंड गावस्कर फॉरवर्ड डिफेंसिवली बैक टू द बॉलर नो रन।
1: वाह, क्या ग्रेन्स, और वो जो रिदम है ना इस कमेंट्री का, ये टिपिकल अंग्रेजी रिदम है, इसको आपने नहीं अपनाया था। और इसकी बात आगे करते हैं, यहां गाना लेके आता हूं, इम्तिहान फिल्म का गाना जो आपकी जिंदगी से मेल खाता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, सुंदर गाने की जगह बनी।

0: मैं वो बात कर रहा था कि अंग्रेजी कमेंट्री का एक माइलस्टोन तय था, एक पैमाना तय था कि ये ऐसी होती है। हिंदी कमेंट्री का आप अपना एक संसार रच रहे थे, वहां किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थीं?
1: नहीं, देखिए बहुत बड़ी चुनौतियां। एक तो कारण ये कि बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है,
0: जी
1: 70% आबादी के प्रति आप जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी, राज सिंह डूंगरपुर ने मुझे बात बताई थी कि कभी भी कोई गलती करो ना, ये मत सोचो कि रेडियो कमेंट्री है, किसने देखा कि क्या हुआ था। आप अगर गलत भी कुछ बोल दिया तो उस पर टिके रहो, लोग ऐसा कहते हैं, कई हिंदी कमेंटेटर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी को समझो, कि आप ईमानदारी से बात करो, कि अगर लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी सत्य की इतनी ज्यादा है कि आप गलती करो तो विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो। एक किस्सा है, कानपुर टेस्ट मैच में मुझे याद है कि प्रणव रॉय बोल्ड हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे एक गेंद पर, और किसी कमेंटेटर ने कहा कि ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ गेंद आई। तो मैंने कहा कि राज भाई, वो मुझे लगता है कि मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आई और बैट के बाहरी किनारे को भी छोड़ती हुई ऑफ स्टंप उड़ गया था। तो बोले यार चलो, राज सिंह जी ने तो वो बोला नहीं था, किसी तीसरे ही कमेंटेटर ने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा एक काम करते हैं, लंच के समय अपन प्रणव रॉय से ही पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लोग लंच के समय गए, राज सिंह जी कितने बड़े आदमी थे, देखिए मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वहां जाकर प्रणव रॉय से पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ, मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ बाहर की तरफ निकल गई थी।
0: गजब।
1: तो देखिए, उस कमेंटेटर ने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने ऑन बिहाफ ऑफ द कमेंट्री टीम उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, हमसे ये गलती हो गई थी कि हम अंदर की तरफ आई और बैट और पैड के बीच में निकली, ऐसा हमने कहा था, लेकिन गेंद दरअसल बाहर की तरफ निकली,
0: उल्टा हुआ था।
1: हाँ, तो सत्य के प्रति उनकी जो आस्था थी वो मेरे दिल में घर कर गई, कि
0: जी
1: आज भी मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। और सच मानिए, लोगों को ये बात पसंद आती है
0: बिल्कुल,
1: कि आप अगर विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो, क्योंकि आपकी इच्छा तो झूठ बोलने की है नहीं, आपसे कोई गलती हुई, आप भी तो इंसान है ना, बैट्समैन से गलती हुई तो वो आउट हो जाता है, अंपायर से गलती हुई तो गलत आउट दे देता है, आप भी तो आखिर इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, आप विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो।
0: क्या बात है। पहला बहुत ही बड़ा मैच जिसकी कमेंट्री करने का आपको मौका मिला था, वो यादें हमारे साथ बांटिए।
1: नहीं, 1972-73 का जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, ब्रेबोन स्टेडियम, तो वो तो मैं भूल नहीं सकता कि हमारे सामने ऋषि कपूर बैठे हुए थे, डिंपल कापड़िया, उस समय बॉबी फिल्म साइन नहीं की थी, तब तक फिल्म आई भी नहीं थी,
0: जी जी
1: दोनों दिख रहे, विनोद खन्ना को हमने देखा, फिर सामने बैठे थे डेविड, बिल्कुल गंजे
0: डेविड अब्राहम,
1: हाँ, तो डेविड वो अपनी भीड़ के साथ नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, और मतलब अद्भुत दृश्य था। विनोद खन्ना को देखा हमने
0: जी,
1: कि अपने मतलब इतने आकर्षक ये लोग, कि अब मैं भी छोटा था ना, 24-25 साल का ही था, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, पहला टेस्ट मैच कर रहा था। और सच मानिए, मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर हूं या नहीं, मुझे लग रहा है कि मौका मिल रहा है कर लीजिए, तो कोई एक सपना था कि अच्छे काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं माता पिता की सलाह से, तो उस काम की तरफ बढ़ गए। तो ये वो एक पहला मौका, बहुत बड़ा मौका था, और कुछ गलतियां मैं करता था, जैसे 39, जैसे मालवा के लोग बोलते हैं ना,
0: जी जी
1: है ना, 69 को,
0: हाँ,
1: तो वो शुरू शुरू में गलतियां होती थी, लोगों ने काफी प्रताड़ित भी किया फिर उसको, लेकिन सीखने की, देखिए हमेशा मैंने ये रखा कि सीखने की इच्छा रखी, गलतियां की तो सीखने की इच्छा रखो, कम उम्र थी, सीखने का मौका मिला। लेकिन धारा प्रवाह कमेंट्री करता था
0: जी जी,
1: और धारा प्रवाह तो कई बार मेरी पत्नी से लोग, उनकी सहेलियां पूछती हैं कि इतना धारा प्रवाह ये कमेंट्री करते हैं तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं? उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो वहां पर इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये धारा प्रवाह का सिलसिला
0: जी
1: चलता
0: जी
1: रहा, तो एक रिदम था, सही शब्द सही जगह,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्रिकेट कमेंट्री में सबसे बड़ी बात सही शब्द सही जगह, तो चूंकि इसमें साहित्य बहुत काम आता है,
0: बिल्कुल,
1: आजकल के क्रिकेटर्स के साथ दिक्कत यह है कि साहित्य नहीं पढ़ते, पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो रोमन लिपि पढ़ते हैं, उनको पता नहीं हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही नहीं है अधिकांश, उसमें 90% लोग जो आज कमेंट्री कर रहे हैं
0: जी,
1: टेस्ट क्रिकेटर्स जो कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हिंदी पढ़ें भाई,
0: बिल्कुल,
1: साहित्य पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है कि संवेद

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आज आपने सुना मैटिनी शो कार्यक्रम में। सुशील जी से बातों का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अगले हफ्ते यानी 8 अगस्त को इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर सुनिएगा मैटिनी शो 8 अगस्त को दिन में 11 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजसी कामले की। मिलेंगे अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया।

0: मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्वी शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक दक्षिण आंतरिक कर्नाटक कोंकण गोवा केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मदन मोहन की तर्ज पर लता मंगेशकर और साथियों को आपने सुना साहिर लुधियानवी के बोल थे गजल फिल्म की ये प्यारी सी गजल आपने सुनी।
1: देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती है।
2: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
1: लेकिन कब, कैसे
2: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

सुमन कल्याणपुर और सखियों को आपने सुना फिल्म पूर्णिमा में। भरत व्यास के बोलों को सुर में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज थी, फिल्म थी दिल एक मंदिर।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके

0: पर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर. रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है.
4: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है.
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी.
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा.
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे.
5: तेरा जवाब नहीं.
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग.
5: प्यार का राग सुनो रे.
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से.
5: सदा रही है, सदा रहेगी.
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर.

लता मंगेशकर और साथियों को आप सुन रहे थे। शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों को।

0: गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है,
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ने काम किया।
1: ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने
2: देखा। मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी का गाया, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। यादों की महफिल कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, विविध भारती की सुर लहरियों पर आपके रेडियो सेट पर जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लेकर आते हैं बहुत से ऐसे नगमे जो आपके दिल में समाये हुए हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही नगमे हैं। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर इबारत पढ़ी है और वो समझ ही चुके हैं कि आज इस कार्यक्रम में किस हसीन नाज़नीन और मशहूर अभिनेत्री के गीत हमने शामिल किए हैं। ये इबारत जो आज हमने पोस्ट की है फेसबुक पर, आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनका आना था, मौसम आशिकाना हो गया, हुस्न का वो नाज़ो अंदाज़ देख चांद जाने कहाँ खो गया, कुदरत ने न जाने कहाँ से छिलकाई ये बदरिया, सौंदर्य ऐसा जैसे सावन के मौसम की रात, नगमा और शेर से छलकते हुए जज्बात उस महज़बीन के, नरगिस के फूल सी जैसी आंखें, फिर प्यार हो जाए तो हम क्या करें, दो सितारों ने कहा ये कौन हुस्न परी आई है जिसने तन मन की सुदबुद को बेगाना कर दिया, वक्त आज भी वहीं ठहरा है खामोशी में, कभी धड़कनों में कभी दुआओं में तेरा इंतजार रहता है, गुलों में रंग भरे जब बाद नौबहार चले, चांद चमके खुदा करे उस रोज तू आए।

श्रोताओ, आज बात है एक नाज़नीन चेहरे की जो जब भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर नजर आता तो लोग देखते ही रह जाते। ये थी अभिनेत्री मीना कुमारी, जिन्होंने अपने अभिनय के फन से सबके दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो उनकी याद से कभी खाली ना हुआ। मीना कुमारी की याद को आज भी दिल कहीं ढूंढता है। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी फिल्मों के चंद नगमे हमने सुरीला सफर कार्यक्रम में लिए हैं और इन्हीं नगमों से इस कार्यक्रम को आज सजाया है। तो बताइए कि फिल्मों में आपको मीना कुमारी की अदायगी कैसी लगती थी? उनकी फिल्मों की कौन सी यादें हैं जो आपके साथ आज भी हैं? उन पर फिल्माया गया कौन सा प्यारा सा गीत है जो आपको आज भी बहुत पसंद आता है? बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। और आपको बताना है इस गीत के संगीतकार।

0: ये परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओ, जहाँ मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीज़ा का ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीज़ा जो थी वो अपने डायलॉग्स के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिखकर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थी। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थी जिन्होंने अभिनय को भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। और
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा निवारण संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। राज्य में खात्मे की कगार पर नक्सलवाद। साल 2021 से अब तक सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से जब्त किए 972 आधुनिक और देसी हथियार। रांची के रिम्स में राज्य की पहली प्रसव पूर्व आनुवांशिक जांच सुविधा शुरू। गर्भ में ही सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों का लग सकेगा पता। कोयला के बाद अब टेक्सटाइल हब बनेगा धनबाद। स्थानीय महिलाओं और युवाओं को मिलेगा बड़े पैमाने पर रोजगार। पलायन पर लगेगी रोक। और रांची सहित कई जिलों में कल से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। पश्चिम सिंहभूम को छोड़कर बाकी राज्यों में सामान्य से 26% कम वर्षा रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में धांधली रोकना है। कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए जुर्माना और संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी। राज्य में सुरक्षा बलों के कड़े अभियानों के कारण नक्सलवाद अब पूरी तरह खात्मे की कगार पर पहुंच गया है। आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार पिछले 15 वर्षों में पुलिस ने न केवल नक्सलियों से अपने लूटे गए हथियार वापस लिए बल्कि उनके गढ़ों को भी ध्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि साल 2021 से जुलाई 2026 तक चले विशेष अभियानों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से कुल 972 आधुनिक और देसी हथियार जब्त किए हैं।
2: जो नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं या जो नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं उनसे पुलिस लूटेड हथियार, उसका एक डेटाबेस झारखंड पुलिस के द्वारा बना हुआ है। भारत सरकार के द्वारा भी इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें देश भर के पूरे पुलिस लूटेड हथियारों का ब्यौरा उसके अंदर होता है। और जैसे कोई छत्तीसगढ़ पुलिस का कोई वेपन हमारे पास है तो हम वो रिक्वेशन हम लोग वो करेंगे, हम लोग उनको दे देंगे। हमारा वेपन उनके पास है तो हम लोग उनको रिक्वेशन करेंगे। और लगभग 1000 पुलिस लूटेड वेपन्स है जिनका डेटाबेस हमारे स्पेशल पास है।
1: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म जमा न करने वाले 43,68,000 से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि फॉर्म जमा न करने वाले अधिकांश मतदाता हटिया, रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर पूर्वी

0: जैसे क्षेत्रों के हैं। प्रभावित लोग 5 अगस्त के बाद अपनी दावा आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
1: ग्रामीण क्षेत्र में आपका जो एनजीडी का संख्या थोड़ा सा कम है, शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में अर्बन का माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा है, वोटर्स का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। फिर बाकी जगह पर भी आपका वो सूची है, वो अपने बीएलटू का बैठक में फाइनल हुई थी, उसके बाद वो 5 अगस्त के बाद कोई आपत्ति होगी मतलब उसको निराकरण।
0: रांची के रिम्स ने प्रसव पूर्व अनुवांशिक जांच की सुविधा शुरू कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के जेनेटिक्स विभाग में अब गर्भ में पल रहे शिशु में सिकल सेल, थैलेसीमिया और डीएमडी जैसी गंभीर जेनेटिक बीमारियों की जांच हो सकेगी। धनबाद के निरसा अनुमंडल में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी प्रिंटिंग प्रेस का भंडाफोड़ किया है। निरसा एसडीपीओ लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में पुलिस ने बीसीसीएल के एक जर्जर क्वार्टर में छापेमारी कर करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित लॉटरी, प्रिंटिंग मशीन और उपकरण जब्त किए हैं। मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। देवघर का विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है और सावन के शुरुआती 3 दिनों में ही करीब 2 लाख कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ का जलार्पण कर लिया है। मेले के दूसरे दिन सर्वाधिक 1,05,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। कांवरिया पथ पूरी तरह केसरिया रंग और बोल बम के जय घोष से गुंजायमान है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोयला नगरी धनबाद के बेलगड़िया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एंट्री से स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। इस नई उद्योग इकाई के शुरू होने से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और महिलाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलेंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित हो रहे इस क्षेत्र से न केवल पलायन रुकेगा बल्कि धनबाद की अर्थव्यवस्था को कोयले से अलग एक नया औद्योगिक विस्तार भी मिलेगा।
2: वो टेक्सटाइल कंपनी से करा हुआ है, राजधानी टेक्सटाइल बिरला ग्रुप से, और हम लोग बेलगड़िया में जमीन चिन्हित कर लिए हैं। धीरे धीरे देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1500 से 2000 लोगों का कैपेसिटी का प्रॉपर टेक्सटाइल पार्क बन, ताकि वहां रहने वाले कम से कम 2000 लोगों को वहां पर रोजगार मिल सके।
0: कोडरमा वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए स्नेक रेस्क्यूअर प्रशांत तिवारी को विशेष किट देकर सम्मानित किया है। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सौमित्र शुक्ला ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में घरों के आसपास सांप निकलने पर उन्हें मारे नहीं बल्कि रेस्क्यू टीम को 8789356215 नंबर पर सूचित करें। उन्होंने सर्पदंश की स्थिति में झाड़फूंक की बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर इलाज कराने की सलाह दी है।
3: जब भी सांप अगर आपको घर में आसपास कहीं निकल रहा है तो जो भी स्नेक रेस्क्यू टीम के मेंबर होते हैं इनसे संपर्क करें, या वन विभाग की टीम के भी थ्रू जो और लोग भी सांप पकड़ते हैं उनसे संपर्क करें, और अगर खुद आप दक्ष नहीं है उस चीज में तो सांप को डायरेक्टली हैंडल ना करें।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर साइक्लोनिक सर्कुलेशन खिसकने से झारखंड में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल कुछ धीमी पड़ गई है। हालांकि कल से रांची सहित कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में इस सीजन में अब तक सामान्य से 26% कम वर्षा दर्ज की गई है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता।

0: और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
1: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा निवारण संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। राज्य में खात्मे की कगार पर नक्सलवाद। साल 2021 से अब तक सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से जब्त किए 972 आधुनिक और देसी हथियार। रांची के रिम्स में राज्य की पहली प्रसव पूर्व आनुवांशिक जांच सुविधा शुरू। गर्भ में ही सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों का चलेगा पता। कोयले के बाद अब टेक्सटाइल हब बनेगा धनबाद। स्थानीय महिलाओं और युवाओं को मिलेगा बड़े पैमाने पर रोजगार। पलायन पर लगेगी रोक। और रांची सहित कई जिलों में कल से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। पश्चिम सिंहभूम को छोड़कर बाकी राज्यों में सामान्य से 26% कम वर्षा रिकॉर्ड। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में राजन कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा मौन समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग हैं। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें संवाद खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते हैं। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, पूरा जीवन इसी तरह खत्म हो गया चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूंगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

मुझे पर फिल्माया गया ये गीत था आजाद फिल्म से। आजाद फिल्म में उनकी को स्टार कौन थे श्रोताओं? और अगर आप किसी जो खास उनके को स्टार रहे किसके साथ, यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती हैं, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थी। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हों, उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है। जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पांव मैंने देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ज्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी अपने कलामों में नाज नाम का इस्तेमाल करती थीं और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नाज नाम से वो लिखा करती थीं। और हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आजाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नजर आती हैं और खिलखिलाती हुई नजर आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी, और फिल्म जो रिलीज हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी? आपकी सहूलियत के लिए बता दें, 1952 में रिलीज ये फिल्म थी।

स्टार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओ मीना कुमारी का, ये आप जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफर कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी जो फिल्में थी उनमें आजाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का जमीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज में एक खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और

प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ।

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे श्रोता, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं। तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी हैं। उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं, यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में, और आपको कोई एक फिल्म बतानी है

कुमारी जी, बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जरूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकिजा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल खत्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज में है। ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज कौन सी है? मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है?

इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है श्रोताओं, और आप सुन रहे थे भीगी रात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती हैं मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी जबरदस्त एक्टिंग करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हो।

फिल्म के इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं, और ये गीत किस फिल्म का है इसकी भी एक झलक आपको सुनवा देते हैं।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है, जहाँ तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सुंदर लगती है मीना कुमारी। सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे सुरीला सफर कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो।

दोस्तों, त्रिवेणी की धाराएं आज मिल रही हैं बारिश की बूंदों पर। थोड़ी खुशी थोड़ा गम अपने आगोश में समेटे बारिश जब आती है तो गर्मी से निजात दिलाती है, नहीं आती तो परेशानियों का पहाड़ ठेल देती है धरती पर। लोग बूंद बूंद के लिए तरस उठते हैं। हर मौसम में छिपा होता है थोड़ा न थोड़ा कहर, ये प्रतीक है इंसानों का। हर इंसान में खामियां और अच्छाइयां होती हैं। स्वीकार कीजिए अच्छाइयां, दूर फेंकिए बुराइयां। बरसात के मौसम की खूबियों से खुशी पाइए, इसके कहर से बचने का उपाय सोचिए, तभी बरसात के मौसम की खूबसूरती को आप महसूस कर पाएंगे।

की चादर सी बिछ जाती है जब होती है बरसात। पानी से नहाए पेड़ पौधे हरे रंग की पोशाक पहनकर झूमने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, अगर बारिश न हो तो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो, जिनका जीवन यापन ही पेड़ पौधों और जलाशयों से होता है। अगर बारिश नहीं हो तो नदी तालाब सूख जाते हैं, जंगल के पशु पक्षी प्यासे ही दम तोड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जिंदा रख सकते हैं, नए पेड़ पौधों की नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण हमारी तरह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पर्यावरण से संतुलित बारिश होगी। हम बरसात के गीत यूं गाएंगे।

बरसात के सुहाने मौसम का गुणगान करना और बारिश की खूबसूरती पर फिदा होना सिर्फ इतना काफी नहीं है, हम सबकी एक जरूरी जिम्मेदारी है बारिश के पानी को इकट्ठा कर संग्रह करना। वर्षा जल के संग्रहण के अंतर्गत घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को एकत्रीकरण के लिए बनी टंकियों से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पत्थर से विशेष तरह की नालियां बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। खोद कर बनाए गए तालाबों का निर्माण, पत्थरों और सीमेंट से किनारा बनाकर बीच में गड्ढा खोद कर जल संग्रहण और भी बहुत सारे तरीके इजाद किए जा चुके हैं। चलिए खुद से पूछें, वर्षा जल के संग्रहण में हमारा अपना कितना योगदान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास

0: को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और चालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना गोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक दो

0: दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म यहूदी में लता मंगेशकर और सखियों को शैलेंद्र के बोलते शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।

0: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है. पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे.

फिल्म अर्धांगिनी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला वसंत देसाई ने। और अब आपकी नजर कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: जेल गए, बीजेपी एस सी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, पूछताछ चल रहा है, हो सकता है एजेंसी उन्हें भी जेल भेज दे।
1: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों के प्रदर्शन के लिए 100 निःशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके लिए 3 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, ट्राइबल फैशन शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भव्य आदिवासी शोभा यात्रा शामिल है। यह आयोजन दिशम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति को समर्पित होगा, जिसमें देश भर से 5,000 से अधिक कलाकारों और सांस्कृतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर 4 अगस्त को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। झामुमो ने राज्य के सभी 24 जिलों में श्रद्धांजलि सभाओं की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ जिले के नीमरा स्थित लुकैया टांड में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी की 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्य आयोजन स्थल पर करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया वीडियो संदेश की सराहना करते हुए इसे दिल छू लेने वाला और बड़े दिल का परिचायक बताया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किए जाने के बावजूद भटके हुए युवाओं को माफ करने और उन्हें अदालत में घसीटने के बजाय सही राह दिखाने की प्रधानमंत्री की अपील उनकी महानता को दर्शाती है।
2: प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ बच्चों ने जंतर मंतर से बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो कड़ी कार्रवाई कराता, लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय और बच्चों के प्रति प्यार कि उन्होंने सबको माफ करते हुए कहा कि आइए बच्चों देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें, देश के लिए विकास में अपना सहयोग दें और देश को और मजबूत बनाएं।
1: आयकर विभाग ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 5 करोड़ 90 लाख से

आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। तेल विपणन कंपनियों ने आज से 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। नई दरों के अनुसार रांची में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,922 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक नई कीमतें आज से ही लागू हो गई है, जिससे रेस्टोरेंट, होटल और खान पान के कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले में खेलेंगे। इन सभी 10 मुक्केबाजों के कल सेमीफाइनल में जीत हासिल करने के बाद रजत पदक पक्का हो गया है। ये राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मुक्केबाज अब स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। वक्त दोपहर का, बारिशों की रिमझिम इन हल्की ठंडी फुहारों के साथ साथ लीजिए। आपके रेडियो सेट पर शुरू हो रहा है प्रोग्राम। श्रोताओं, आप ही के पसंदीदा गीतों का प्रोग्राम मन चाहे गीत, तो सुनिए प्रोग्राम। देखिए कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो नहीं। आज सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

सावन की ठंडी ठंडी फुहारों की तरह ये गीत हैं श्रोताओ, जो बंद हैं आपकी चिट्ठियों में, और उन्हीं में से ये गीत हमने आपको सुनवाया। दो रास्ते फिल्म का ये गीत था, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इस गीत को पसंद किया मालीवेस बीड़ शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, और इस गीत में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। श्रोताओ, आइलर नगर केटगांव से इसी गीत को पसंद किया बाबू साहब नवथर, अक्षय चंदन, जय कुमार चंदन, सुचिता चंदन, और बसमत रोड परवणी से रणजीत कारेगांवकर, कंचन सृष्टि, समरजीत कारेगांवकर की ये फरमाइश थी। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, पैरी पार्वती और राधा चंद्राकर की फरमाइश आपने सुनी।

राहुल देव बर्मन की तर्ज, गुलजार के बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे ये गीत आंधी का। और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वारुंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी, अश्विनी, कुंडलिक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव, श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाहा बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव शशिकला, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान सिंह की, ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

मिर्जा सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने और जीसीएफ स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निमो की ये फरमाइश है। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हम सफर। इस फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से कुमार प्रथमेश प्रणाली, कड़ा रोड से कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से, विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है। महेंद्र

नागेश पारस, जयेश, ऋषभ, संयम, सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निजामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये फरमाइश थी।

आए और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मनचाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रही।
1: ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है, ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं, बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जहाँ मैं ही कहूँगा, लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, डरता हूं अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा।
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है।
1: हाँ?
0: अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो जबान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो, कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूं, कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो, जो जहां है वो वहीं रहेगा। लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा। अरे, मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूं? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
0: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
1: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा। मैं अभी नितालिया को भेजता हूं।
0: जी। चोबोकोव चले गए, अब नितालिया आएगी। ये क्या? अरे, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं। अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या? मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी भारी आंख फड़क रही है।
2: अरे, यहाँ तो आइवन लोमोव विराजमान है।
0: आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
2: जी हाँ।
0: क्या?
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
0: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
0: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
0: जी।
2: आपके लिए कुछ खाने को लाऊं?
0: जी जी जी, आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है, आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
0: जी।
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
0: जी।
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
0: कुमारी नितालिया।
2: जी।
0: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
2: कहिए।
0: जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
2: आपके लिए कंबल हो?
0: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है? आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
0: देखिए कुमारी मिथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
2: क्षमा कीजिए
0: जी,
2: क्या क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
0: जी हाँ, क्यों
2: ये नहीं सोच कर बताइए।
0: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है? और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
2: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
0: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
2: इसलिए कि वो बगीचा हमारा है।
0: अजी, मैं चेरी को उस बगीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
2: जी हाँ, मैं भी उसी बगीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
0: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बगीचा आपका है।
2: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
0: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
2: अरे, मगर वो बगीचा आपका कब से हुआ?
0: जब से मैंने होश संभाला।
2: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
0: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी निकालिया, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
2: देखिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
0: मैं जानता हूँ कुमारी निकालिया, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
2: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
0: जी,
2: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती।
0: कुमारी निकालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
2: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बगीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
0: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी निकालिया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें।
2: फिर वही दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूँ कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
0: जी
2: है।
0: नहीं जी, नहीं जी, नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
2: आइवन, अगर आप लगातार 2 दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
0: देखा है ना सीना दूरी। कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया, मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
2: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
0: ओ, मेरे गले में कांटे उगाए हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूं आपको। मैं फिर कहता हूं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
2: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
0: जी नहीं, वो मेरा है।
2: वो बगीचा हमारा है, और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
0: क्या?
2: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
0: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
2: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
0: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बगीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
2: आइवन, अगर

0: अगर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
1: कुमारी नितालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता, तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
0: नहीं, हमारा है।
1: जी नहीं, मेरा है।
0: हमारा है।
1: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: ये क्या हो रहा है
0: बाबा? आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
2: हमारा है और किसका?
1: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था, और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
1: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
0: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
1: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
1: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लफों मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है, तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने की बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे।
1: जी हाँ, क्यों नहीं। बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूं, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूं मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं।
1: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
1: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
1: मैं तो जैसे आपके इस आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूं, आप मेरे पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं।
2: क्या कहा?
0: बाबा बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूं?
1: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
0: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूं?
0: हाँ।
2: लेकिन मैं क्या करूं?
0: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाएं।
1: खोद लाएं? कुमारी नितालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
1: आप मेरी यूं खिलना उड़ाइए, मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
0: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
1: हाँ, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा।
2: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ, और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
1: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए, जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे
2: हैं। तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
0: इनके घराने में ठीक किसका था?
2: हाँ, इसका दादा संकी।
1: दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
2: अरे, तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
0: आपकी नानी के मुंह में जबान नहीं ततैया मिर्च थी, और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
1: मेरी बही ठंड के तार झंझनाने लगे हैं, और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और दिल, और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से पहले मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा, मेरी टोपी का रहे।
2: अरे तुम मक्का, अरे भी,
1: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही मेरी टोपी, अब दरवाजा की तरह मेरी टांग सुन हो गई।
2: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
1: जा रहा हूँ।
2: इतना और सुनते जाओ, हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग, नहीं टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ,
0: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ,
2: चला गया कमीना कहीं का।
0: हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
2: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
0: हाँ, नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
2: निर्लज्ज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला, आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
0: कैसा प्रस्ताव?
2: अरे, ब्याह का प्रस्ताव। कमीना, जलील, गुंडा कहीं का, मेरी बेटी से ब्याह

0: करना चाहता था।
1: पापा, आपने आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
0: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया?
1: वो मुझसे प्यार करना चाहते थे।
0: अरे अरे क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
1: बाबा बाबा उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
0: क्या अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
1: हाँ बाबा अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
0: अरे मगर बेटी, अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
1: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
0: अरे बेटी नितालिया होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊं?
1: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
0: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
1: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
0: नितालिया बेटी, हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। अच्छा। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
1: वो कब आएंगे?
0: ते भाई उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
1: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
0: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
1: कैसे?
0: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया, और अब
1: क्या क्या मेरे कारण?
0: और नहीं तो क्या?
1: बाबा अब आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना कीजिए।
0: अच्छा बाबा अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
2: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है,
1: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
2: वो बगीचा मेरा है।
1: जी हाँ, वो बगीचा सचमुच आप ही का है, आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
2: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
1: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा करती।
2: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
1: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब आप कोई और बात कीजिए।
2: वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
1: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? हाँ, आप शिकार खेलने के लिए कब जा रहे हैं?
2: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
1: क्यों?
2: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
2: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाल प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
1: डब्बू आपने लिया किससे था?
2: अजी, ये पहले मेरे नोव के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई, और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरे नोव इससे बिछोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरे लोग के सामने 150

0: है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
1: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
0: जी
1: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। एक पूरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
0: तो सुन लीजिए कुमारी नितालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
1: जबड़ा छोटा है
0: जी,
1: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
0: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
1: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
0: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
1: जरा ये भी करवाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
0: जी
1: किस राजघराने में से है, किस स्कूल का दीपक है?
0: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
1: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
0: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा।
1: आप होंगे, होंगे क्या आप हैं?
0: जी
1: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचे को अपना बताया और अब अपने खाद मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
0: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
1: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघारे चले जा रहे हैं।
0: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
1: लेकिन सच क्या है?
0: आप ही कहिए कि आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं।
1: कहाँ छोटा है?
0: छोटा है।
1: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा
0: दूं। और मेरा बस चले तो मैं वही गोली फिर डूबने लगा।
1: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
0: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
1: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं हूँ।
0: अगर यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे कनपटी कनपटी कनपटी।
1: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वाकर अमर हो गया है और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
0: मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
1: अब मैं चुप नहीं हूँ।
0: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
1: पापा पापा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
0: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू जैसा बढ़िया कुत्ता सारे प्रांत में नहीं।
0: मेरे डब्बू को छोड़कर आप ऐसा दावा जरूर कर सकते हैं।
2: तुम्हारा डब्बू भी बड़ा गुणवान है। उसके कान खड़े और शरीर गठीला है, पिछली टांगे पतली लंबी सुडोल है, लेकिन उसमें दो ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण उसे कुत्ता कहना एक अच्छी नस्ल के कुत्ते का अपमान करना।
0: देखिए देखिए देखिए, मुझे दिल की बीमारी है, वास्तविकता को झुटलाने की कोशिश न कीजिए। कुत्तों की वार्षिक दौड़ में मेरा डब्बू राजा साहब के कुत्ते के बराबर रहा था और आपका वो कालू दौड़ दौड़ कर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया।
2: तो बेचारा और क्या करता, दौड़ शुरू होने से पहले राजा साहब के कारिंदे ने उसे हंटर जो मारा था।
0: अरे काश वो उसे गोली मार देता।
2: आइवन, ये मत भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ। और मुझे गुस्सा बहुत आता है।
0: ओह।
2: और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि
0: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर धड़कने लगा। अरे हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल,
1: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियां मारा कीजिए।
2: मक्खियां उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं, क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
3: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
2: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
3: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं

0: मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए?
1: ओ, तुम्हारा तो सर बन गया।
0: तेरी कितनी धरती है, लेकिन कारण भी तो बताइए।
1: मूर्ख क्या समझे?
0: और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा ना सके, उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
1: हाँ, मैं कहता हूँ जहर उगलने से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
0: आप क्या सिर फाड़ेंगे? गलियों में बच्चे तक जानते हैं। अरे मेरी जान, आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
1: मुझे टांग दो। और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
0: मेरी टांग आ गई। मेरा दिल टूट गया।
1: डॉक्टर
2: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा पापा, जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, आइवन, बाबा आइवन चले गए।
1: क्या मिताली ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खिड़की खोल दो। तुम मेरा दिल पीट रहा है। बेटी तुम मेरा एक काम करो।
2: हा? क्या बाबा?
1: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
2: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे?
1: अरे बेटी, मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
2: अपने लिए?
1: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
2: नहीं बाबा।
1: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू भी ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
0: ना तो ना।
1: अरे आइवन तो भी जिंदा है। आइवन
2: जिंदा है।
1: लो पानी पी लो।
0: मैं कहाँ हूँ?
1: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी। हा? अब तुम घर से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
0: हा? क्या?
1: हाँ बाबा, हाँ, नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
0: क्या सच?
1: चुप चुप। नितालिया बेटी, लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
2: बाबा।
1: आइवन जी, ये लो नितालिया का हाथ, मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
0: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
1: अच्छा?
0: जी हाँ। तो वो बात क्या थी? मुझे कुछ तो याद आ रही है।
2: जी, मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
1: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
0: हाँ याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
2: ये कई गुना घटिया है।
0: जी नहीं,
2: ये आपको मानना पड़ेगा।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: मैं कहता हूँ घटिया है।
0: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: बढ़िया
0: नहीं है, घटिया है। मैं कहता हूँ बढ़िया है।
1: तुम लोग
0: जी है, मैं ही।

अभी आप सुन रहे थे इंटन जेकब की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साइलेंस लाइट
1: साउंड
0: कैमरा एक्शन।
2: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं
3: इस के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में धांधली रोकना है। कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी। रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में श्री सेठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं, लूट और पेपर लीक ने झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। सरायकेला खरसावां में जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में भाजपा जिला कमेटी ने जिला समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। पूर्व महापौर विनोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से धैर्य रखने की अपील की है। श्री पांडे ने कहा कि झामुमो पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने आंदोलनकारियों से सीआईडी जांच पर भरोसा रखने का आग्रह करते हुए कहा कि जांच एजेंसी पूरी निष्पक्षता से मामले की तह तक जा रही है। चाईबासा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर आज विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रतिमा स्थापना का विरोध कर रहे एक आदिवासी संगठन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों के प्रदर्शन के लिए 100 निशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके लिए 3 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: अक्सर क्या आके जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
6: जी,
5: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था। टेम्पो की बात कर रहा हूँ। आज क्या क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है। इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं तो उसको थोड़ी जगह चाहिए के सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा 2 बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापिस जॉइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है। तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
6: नहीं आती है। जी जी जी
5: जी।
6: तो कोई एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था? उन दिनों 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था? एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग?
5: एक दिन।
6: अच्छा,
5: एक दिन में 2-2 गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विथ सिंगर के। पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विथ कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज। वो 11:30-11 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30-3 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार वो भी लाइव, 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने 2 भी गाने किए। और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना 2 दिन में भी किए।
6: हाँ जी।
5: तो वो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
6: जी,
5: लाइव ऑर्केस्ट्रा भी। तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है, उनमें हेडफोन में उनको आता था जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए, मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं,
6: बिल्कुल।
5: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
6: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था।
5: हाँ, ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए, जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की कृपा होती है। उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
6: बिल्कुल।
5: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और प्रेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा,
6: पामिला जी,
5: हाँ प्रेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए, वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज्यादा बेटर है,
6: मिलता है।
5: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे, इतने में यश जी आ गए। यश जी आते हम दोनों चुप हो गए, तो हम दोनों को देखते यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं बोलो तानसेन क्या बात है, मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है, और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो, मैं बोला अभिजीत ज्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये हमारा काम है, म्यूजिक का हमारा नहीं है, म्यूजिक का काम है म्यूजिक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है, तो ही वेरी इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहे हैं कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तानसेन जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
6: क्या बात, और बहुत शानदार गाना गाया उसने।
5: नहीं नहीं बहुत अच्छा,
6: आवाज में जो सैफ अली साहब की आवाज
5: सूट हुई, और
6: बिल्कुल सूट हुई।
5: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, पर जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था आई। तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है। हाँ। जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से।
0: हाँ, मतलब मगर पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भड़के,
1: अमर प्रेम का,
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात किशोरदा उस वक्त जिंदा थे
0: और आर डी बर्मन साहब से,
1: आर डी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार,
0: अमित कुमार,
1: तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होके उनके पैर छूने के, बोले नहीं नहीं चंद साहब के लड़के बहुत बताओ, वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आए, अमित नहीं आए, इतने में अमित नहीं जाएगा। तो उनको बोला देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो, टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए, और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही।
1: और उसके बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ, तू चोर में सिपाही
0: जी,
1: तो जिसका वो गाना था

0: ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर,
1: जी
0: और नीरज साहब के साथ मैं पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो
1: हाँ
0: किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया,
1: बहुत सुंदर
0: था
1: है।
0: कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था और नीरज साहब का लिखा हुआ था,

0: मेरे नू,
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए,
1: वाह सुन।
0: हाय।

0: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहां जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने सुमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत,
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के साथ आपने काम किया है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी,
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
1: बहुत सुंदर गाना,
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ पहला गाना था। अच्छा। इससे पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जिसे लादी लिया तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना है जो सिंगर,
1: वो ये था। हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा?
0: नहीं, वो गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैं कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया, और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी जी जी, तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम, शर्मा के होने लगी है गुलाबी ये शाम।

इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो?

0: और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो।
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे, और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी,
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनमें 19-20 चल जाता है।
0: जी जी,
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहाँ दिल में नहीं लगोगे।
0: सही,
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है।
0: जी, जी।
1: तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूँ कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूँ, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते।
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा जी, अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट, जोली मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, प्रमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
0: पूर्णिमा के नाम से हैं
1: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं
0: जी।
1: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
0: नहीं नहीं वो बात नहीं,
1: वो उनको पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट, कि यार वहां जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना,
0: और कला के प्रति समर्पण,
1: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
0: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
1: जी बिल्कुल, सुनिए।
0: कौन सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
0: तुझे चाहना मेरा काम है, फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है दिलीप सेन साहब, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: का परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है।
1: और हम कैसर सेन की औलादे हैं, मतलब कैसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे, और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में। लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी,
1: फोक कहते हैं आमद को। एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सु आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके जॉइंट करती थी, रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं। मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही जैसे सा है तो उसी

0: में चला जाएगा वो।
1: फिर
0: उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
1: कई गीतों में आपने प्रयोग किया?
0: नहीं, मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
1: जी,
0: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, मैं किया ते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडोप्ट किया उस गाने को। हम मेरी चोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
1: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि
0: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो।
1: अब
0: नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक ट्यूने के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहाँ हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वैरायटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, ये नहीं अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं। आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जी तब लगेगा जब जी वाला काम, दूसरों का दिल जीतोगे।
1: जी, चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। कौन सा गाना?
0: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
1: बहुत सुंदर गाना,
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी पांचवी पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में मिला, इसके बारे में हम जानना चाहते।
1: देखिए, दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी,
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चार जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक,
0: अच्छा
1: चार पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का संगीत में रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और पांचवी पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है।
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आई गए हैं, सोहेल सेन के
1: बेटे भी आने वाले हैं अभी जल्द जी।
0: जी तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और आपके परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए, इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो आज लुत्फ होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए, कविताओं की मालूमात रखनी चाहिए, भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू, जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 रागे हैं या 50 रागे हैं या बेसिक 2-4-5, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो 4-5 रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए,
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है
0: जी,
1: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है, हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे यहाँ

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश।
1: मैं आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूँ कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी,
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटाट जब प्रभाव वितस्थले वीरो विलम विलम भुतंग तुंग मार जटाट विगल ज्वल प्रभाव वितस्थले, ये शिव तांडव हो गया
0: जी।
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर के झपेट दिल दुष्ट को दपेट जरा पेट चकल न बजे नक चरा तो दिन तो होता कटा कट गिरी से न पटा पट पटी पटी पाट कभी गुह की लकार की ले जूह जी लकार पड़ी भीड़ भी लकार कटे रखे जनी दान तह तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारो रघुवंश को अनियारो जन पेजे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुंडे दंड न उमन न सुखन न है कल को इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है, कहीं का नहीं, ये हमारे छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, चल मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो इससे आप कुछ भी रैप वगैरह बना सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विविध भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार,
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज में करता था। और
4: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
5: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों के प्रदर्शन के लिए 100 निःशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके लिए

0: 3 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, ट्राइबल फैशन शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भव्य आदिवासी शोभा यात्रा शामिल है। दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि 4 अगस्त को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। झामुमो ने राज्य के सभी 24 जिलों में श्रद्धांजलि सभाओं की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैया टाड़ में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी की 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्य आयोजन स्थल पर करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। जमशेदपुर के दो मुहानी नदी संगम तट पर एक पौधा भविष्य के नाम अभियान के तहत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और पद्मश्री चार्मी मुर्मू ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर दोनों ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित घोटालों और अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज गिरिडीह में आक्रोश पैदल मार्च निकाला। पपरवा टाढ़ से शुरू हुआ मार्च समाहरणालय पहुंचा, जहां प्रदर्शन के बाद उपायुक्त रामनिवास यादव को ज्ञापन सौंपा गया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल मोरी रेलखंड में तिरुलडीह और बकारकुड़ी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक चानो गांव का निवासी था और कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ था। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रांची पुलिस ने शहर के प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर व्यापक सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी तथा सीसीटीवी, बाइक पेट्रोलिंग और सादे लिबास में पुलिसकर्मियों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है प्रोग्राम इवनिंग मेलोडी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है दोस्ती, और इस खूबसूरत से गीत को आवाज दी है नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज ने।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

दरिया दिल में भी आप सुन रहे थे साधना सरगम और मोहम्मद अजीज को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम हम आपको बता दें जिससे इस गीत को हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है मासूम और इस खूबसूरत से गीत को आवाज दी है आरती मुखर्जी ने।

श्रोताओं, खलनायक फिल्म के इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही इवनिंग मेलोडी का आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। सूरज को दीजिए अनुमति, नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:30 होने वाले हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जोहार किसान भाई बहन मन, साभे के हमर देने से ढेर सम्मानी जोहार। और हम ही प्रकाश और रवा मन सुने था कार्यक्रम खेती बारी, और खेती बारी में ढेर सारा जानकारी और हम इनके किसान भाई बहन वास्ते जे कहल जा सको कि बहुत मनी जानकारी लेके आये है, जे हमारे साथे जुड़ल रथिन से अपन आनंद लथिन अपन कार्यक्रम के खेती बारी के। तो बता दिए भाई कि देखा कि बरसात के मौसम में पानी तो छिटपुट पड़ते ही हो और उम्मीद से ज्यादा ही पानी बढ़त हो, और ओकर में कहा है कि खेती बाड़ी में जो बिहन लगावे से लेकर के हम इनके जितना रोजी रोजगार जितना हुआ है सभी काम अपन खेती बाड़ी से लग के करी थी है। और बता दिए कि हर बूंद के कीमत हुआ है, और हर कीमत कहाँ हुआ भाई, जब बारिश कम हुए लगो है उसमें जे खेत में जब हमीन पानी बचा हुई है डोभा में हो गलो, या तो देखा कि कोई भी नदी पोखर में जब हमीन के पानी जमा हो जाए वह पानी के जब बाद में उपयोग कर हुई है तब उस समय हमीन के समझ में आऊ है कि बूंद बूंद पानी के का कीमत हुआ है। और वैसे भी किसान भाई बहन जान ला कि खेती के आधार ही है पानी, कहे कि पानी से ही सारा काम हुआ है। हमीन कोई भी काम कर लिए, चाहे जैसे बीज लगा लिए, माटी में हम इनके कोनो भी काम कर लिए, लेकिन एक बात तो समझ में आओ है कि खेती से जुड़ल कोई भी काम धंधा पानी से ही शुरुआत हो जाए। और वैसे भी मौसम भी बहुत ही साथ देवित हो, ओकर में कहा है कि बरखा के जो पानी है अगर मेड़बंदी करथिन, साथ ही साथ तालाब सोखता हो गलो है, या तो जल जमा करे वास्ते हमीन के डोभा हो गलो, नदी पोखर हो गलो, से सबके जमा करे से हमीन के बाद में बहुत ही फायदा हुआ है। कहे कि खेती बाड़ी जहाँ का अगर हम बात करिए धान के खेती के बारे में, तो धान के खेती में भी पानी के पुरजोर जरूरत पड़ो है, जो किसान भाई बहन सब जानू थीन। और बता दिए हम इनके कार्यक्रम में आज जो है खेती बाड़ी में अपन संगे बात करबे भाई कि कौन तरी जो है किसान जो है अपन प्रशिक्षण लेकर के कौन तरी फायदा लेकर के खेती बाड़ी के काम करो थीन, मछली पालन कैसे करो थीन, और कुछ महिला के बात सुने बन कि कौन तरी महिला समूह बना करके खेती बाड़ी के काम करो थीन और कैसे लाभ लो थीन। तो चलते चलो ये सबसे पहले हम गीत सुनो, ये गीत के बाद हम बात करबे कि कौन तरी हम इनके किसान जो है प्रगति करो है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ, तक किसान भाई बहन सब अध्यक्ष जानकारी के साथ साथ एक गीत सुन लिए। गीत के बाद बात करूँ ही कि हम के मन में एक सवाल हमेशा हो है कि किसान जहतीन से कौन तरी आगे बढ़ सको ही है, कैसे हमें कोई जानकारी ले सको ही है, कैसे हमें विकास कर सको ही है। तो एक बात ये भी कहल चाहबे कि हमने के कोई भी काम हो तो हर ओकर वास्ते क्या है कि सरकार हमेशा

0: पहल करू है कि किसान के हमेशा फायदा पहुंचे। किसान कहे के मतलब हो कि खेती बाड़ी से जुड़ करके पशुपालन से जुड़ल जे अपने माटी से जुड़ल हो, सबके एक यही कहना रहो है कि लाभ कैसे होते हैं, हम विकास कैसे होते हैं। तो सरकारी योजना जो है हमेशा हर जिला में तरह तरह की योजना लेकर के आऊ है, बसरते हम इनके जानकारी ना रहे के वजह से वहां तक पहुंच ना पा रही है। अगर बात कहला कि जैसे देखला कि अभी जोर से बारिश हुई तो बारिश में कहा है कि चारों दिन से पानी ही पानी जमा होते, तो ये बारिश में कौन कौन सा फसल लगावे के है, या तो मछली पालन करे हो तो मछली पालन कौन डोभा या तो कौन तरी हमके नदी पोखर में करना हो, या तो हमके कृत्रिम जे आदमी हमीन दने बनावल जे रहल जा है ओकर में कौन तरी मछली पालन करे के, तो हर तरीका वास्ते देखा कि मछली विभाग भी रहो है जे बतावल जाए कि कौन तरी हम के जाल रखे के चाहिए, कैसे हम की बीजा वहां मिलता है और कैसे प्रशिक्षण लेकर के आगे बढ़ सको हैं। तो बहुत सारी जानकारी ऐसा है जो कि हम इनके समझे और जाने के चाहिए। वैसे में एक जानकारी भी लेकर आई है कि एक युवा किसान हथिन जे खेती बाड़ी के प्रशिक्षण भी ललथिन है और मछली पालन के भी ललथिन है, जे अपन अनुभव के साझा करथिन कि कौन तरी घर परिवार देखते हुए अपन रोजी रोजगार के बनेलथिन है और कैसे आगे बढ़लथिन है। तो सबसे पहले हम जानू गया कि बनवारी अगरिया अपन अनुभव के साझा कर थी, तो सबसे पहले सुनो ये इनका जानकारी के ओकर बाद हम बात करबे कि स्वयं सहायता समूह के विकास कौन तरी हुआ है। श्रोताओं, हम आप पहुंचे हैं पकरार गांव और आज हमारे साथ हैं बनवारी जी। तो बनवारी जी से जानते हैं कि किस तरह से खेती किसानी या परिवार चलाने की बात हो या तो फिर अपने रोजी रोजगार की बात हो, तो इनसे जानते हैं इन्हीं के जीवानी की अपने जीव को पार्जन कैसे करते हैं। तो बनवारी जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: अपने सभी श्रोताओं को हमारी ओर से जोहार। हमारा नाम बनवारी एगिरी, हम पकरार गाँव से बिलोंग करते हैं। अभी का जिंदगी जीने के लिए खेती तो एकदम मस्ट है सर। खेती हर हाल में करना ही पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो खेती एक ऐसा विकल्प है, यानी खेती के बिना पूरे विश्व में या पूरे दुनिया में कोई जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए खेती तो आपको करना ही पड़ेगा सर। खेती से अभी बहुत अच्छे अच्छे किसान जीविका उपार्जन कर रहे हैं, नई तकनीकों अपना रहे हैं। और हम तो सभी नौजवान साथियों और किसानों से कहना चाहेंगे, सरकार तरफ से जो योजना चल रही है या कृषि संबंधी भी बहुत सी योजना चल रही है, उसमें सभी नौजवान किसानों को उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए सर। मैंने अभी तक जो भी हम अपने जीवन में किए सिर्फ खेती से ही किए हैं। समय मिला तो अगले दो साल पहले हम मत्स्य विभाग प्रशिक्षण भी लिए हुए हैं। दो गो सरकारी योजना की तरफ से जो डोभा कोड़वाया था, उसमें डोभा कोड़ा उसमें मछली का भी पालन करते हैं, मछली भी बेचते हैं। और मछली के बेचने के साथ से जब घर में रहते हैं तो यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती भी करते हैं।
0: अच्छा बनवारी जी, हमारे गांव में बहुत सारे किसान ऐसे रहते हैं जो कि खेती बाड़ी एक सीधा खाली काम करते रहते हैं कि मौसम बदला खेती बाड़ी का काम किए, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए खेती बाड़ी का नाम ही बहुत बड़ा होता है। पशुपालन है, खेती बाड़ी है, जिसमें बहुत सारी इकाइयां आती है ना। तो आप प्रशिक्षण लेते हैं और तरह तरह के कार्यों को करते हैं, तो इसमें बदलाव के लिए और जागरूकता के लिए किसान को प्रशिक्षण से आपको क्या फायदा हुआ, कैसे आप जागरूकता की ओर बढ़े, अपना अनुभव को साझा किया।
1: हम अपने ये जागरूकता हमारे अंदर तब आया जब हम प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण में जो हमारे वहाँ लोग बताए, ऐसे से बताए कि कम जगह में कम जमीन में भी बहुत अच्छा पैदावार किया जा सकता है और अच्छा उपज करके अच्छा आमदनी उसमें प्राप्त किया जा सकता है। हम अपने जीवन में सर देखिए, हमारे साथ जमीन बहुत ज्यादा नहीं है सर, जमीन बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो प्रशिक्षण के द्वारा, जो सरकार के द्वारा बताया गया नया तकनीक जो अपनाए, उसमें हम बहुत कम माने जगह में कुछ ही एकड़ में बहुत अच्छा फसल माने पैदा हो जाता है और अच्छा आमदनी कर रहे हैं। हम अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे चार बच्चे हैं, चारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ाई चल रही छोटी लड़की का। इस तरह से तो हम चाहेंगे और अपने जीवन में सर अभी तक खेती करके जो कुछ किए खेती पे आश्रित है, बाकी टाइम ये मछली पालन करते और मछली बेचते हैं सर। सर मत्स्य पालन के विषय में सोच रहा कि सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, उसमें जो प्रशिक्षण के द्वारा या दूसरे के बताए से जो हमें जानकारी हुआ, लगा कि नहीं मछली पालन से भी बहुत अच्छा आमदनी किया जा सकता है और अपने रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम जो रांची गए थे सर, रांची से ही विशेष में एक बार सर्टिफिकेट मुझे मिला हुआ है प्राप्त किया। हमारी वाइफ भी गई हुई है, वाइफ भी प्रशिक्षण प्राप्त किया मछली, इसलिए हम लोग दोनों पति पत्नी मिल करके।
0: मछली पालन में क्या क्या तकनीक अपनाना चाहिए हमारे मत्स्य पालकों के लिए?
1: उसमें तकनीक अपनाना चाहिए सर कि समय जब आए कम से कम पानी उसमें लबालब होना, यानी कि कम पानी हो, बहुत गंदा किस्म का पानी हो, वैसे पानी में चूजा को नहीं छोड़ना चाहिए सर। हम बताए तो हम तो यहाँ सर हजार टाउन से ही लाते हैं, वहाँ जो ऑर्डर देते हैं ला देता है, उसी से हम लोग यहाँ पर डालते हैं सर किसान को। और उसमें मत्स्य पालन में सर उसमें उसका आहार देना बहुत जरूरी है। सर, जैसे कि गोबर तो एकदम कंपलसरी है सर। अभी तो हम जो प्रशिक्षण प्राप्त किए उसमें बताया गया उनको दाना बनाने के लिए, मछली का दाना आपको कैसे बनाना है। अच्छा। उसमें ऐसे कि गोबर ले लेना है, अगर एक टोकरी गोबर है तो उसमें कम से कम 5 किलो बेसन डाल देना है और कुछ गेहूं का अनाज भी डाल देना है चूर कर करके, और मिला कर छोटा छोटा टुकड़ा उसको बना देना। एक नंबर एकदम मछली पालन के लिए।

0: से बहुत ज्यादा मछली बढ़ता भी बहुत कम समय में।
1: जैसे खेती बाड़ी करने से पहले अभी बरसात का समय चल रहा है, धान का बिछड़ा का भी समय है, तो कौन सा मिट्टी का चुनाव करना चाहिए या तो इसमें कैसा बिछड़ा लाना चाहिए, कैसा बीज लाना चाहिए, क्या नए नए तकनीकों को अपनाना चाहिए कि पुराने तकनीक को ही चलाना चाहिए, क्या कैसा अनुभव करते हैं आप?
0: हम जो अपने अनुभव प्राप्त किए सर अपने लाइफ में, वो तो अभी सर की अभी के समय में नया तकनीक भी अपनाना चाहिए सर, क्या कि नए तकनीक से जो कम मैंने जगह में नहीं बताया सर कि कम जगह में भी बहुत ज्यादा आदमी उपज कर सकता है, इसलिए हम तो चाहेंगे कि हमारे जितने भी नौजवान किसान हैं एकदम नया मैंने जो तकनीक सरकार बता रही है टेक्नोलॉजी जो जमाने में नए तकनीक से ही करना चाहिए सर, तो उससे ज्यादा बेहतर और ज्यादा उन्नति कर सकता किसान। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि खेती का मौसम है अभी, जब तक बिचड़ा अच्छा तरह से तैयार हो गया और पानी अगर मेहरबानी अगर बारिश हो जाता तो कृपया धान लगाएं, समय पर लगाएं ताकि बढ़िया से बढ़िया आमदनी हो और हमारे देश का विकास किया जा सके सर, हम तो अपने सरातों यही कहना चाहेंगे।
1: तो आप हमारे कार्यक्रम में अच्छी जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जोहार सर।
2: भारत का लगभग एक चौथाई हिस्सा सूखे की चपेट में है, पानी की कमी से हर साल बर्बाद हो रही है फसल। कई जमीन में मात्र एक ही फसल बोई या लगाई जाती है, जमीन परती रह जाती है, किसानों में भी छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, खाद्यान्न की समस्याएं मुंहबाई खड़ी है। इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार अनेक कृषि योजनाओं को लागू की है। आज हम बात करेंगे ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना यानी कुसुम योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। सबसे पहले आइए जानते हैं कुसुम योजना के बारे में। कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी जमीन पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। यह योजना बिजली संकट से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रख शुरू की गई है। कुसुम योजना के तहत देश भर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। भारत में किसानों को सिंचाई में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और अधिक या कम बारिश की वजह से किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के जरिए किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। कुसुम योजना के तहत सोलर पंप किसानों को सब्सिडी के साथ देती है और ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को केवल कुल लागत का 10% राशि का भुगतान करना होता है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
1: तो किसान भाई बहन सुनलिए कुसुम योजना के बारे में, साथ ही साथ ये भी सुनलिए भाई कि प्रशिक्षण लेकर के कोई भी काम करे से का फायदा हो सको है। काहे कि देखा कि आंख में चमक और आत्मविश्वास तबे बढ़ो है जब हाथ में हुनर हो है। काहे कि कोई भी कौशल विकास बेकार ना जाए। आज के समय में कोई भी रोजगार करे वास्ते या कहीं भी खड़ा रहे वास्ते आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है, और खासकर जब मौसम से लड़ाई हो, जब ऐसा चीज से हमें के सामना करे पड़ो है जे हमें के बस में ना रहे। खास कर में प्रशिक्षण बहुत ही काम आऊ है, काहे कि मौसम बेमौसम कब बारिश तेजी हो जितो कब कम बारिश हो जितो ओकर वास्ते हमें के हमेशा तैयार रहे पड़ो है। वैसे में कुसुम योजना बहुत ही कारगर है, काहे कि देखा कि सरकार के एक पहल है लेकिन वह किसान जे जागरूक हथिन जे वहां तक पहुंच पारु थिन खासकर कृषि विभाग के पास सरकारी योजना के लिए वास्ते उनका ही लाभ हुआ है। ये तो रहले भाई की लाभ के बारे में, हमारा उम्मीद है कि किसान भाई बहन के बहुत पसंद आये होते हैं। अब हम इन बात करें स्वयं सहायता समूह के बारे में। तो वैसे तो हर गांव में और हर जगह महिला स्वयं सहायता समूह भी चलो है और पुरुष के भी स्वयं सहायता समूह चलो है। जगर मैं हम कह सको ये अगर किसान के बात ले लबा तो किसान संगठन भी चलो है। तो कर मैं एक बात ये भी कहल चाहे कि भाई स्वयं सहायता समूह है जे 10-20 लोग के मिला करके एक छोटा सा समूह बनावल जाए है जेकर में छोट छोट बचत वहां पर जमा करल जाए है, लेकिन का हम इनके बचत के का फायदा हो सको है हम इन अनुमान भी ना लगा सको। ये काहे कि जगर में जो भी हम इनके जैसे गाहे बेगाहे खेती बाड़ी करे हो, अब धर धान लगावे के समय हो, अब तोहर पास पैसा ना हो, तब

0: कि हाथ के हुनर के, तो अपन अगर हजारीबाग के बात कहला तो देखला कि संत कोलंबस कॉलेज के सामने ही वहां पर एक आरसीटी एक संस्थान खुला है, वहां पर का है कि कौशल विकास जोड़े निशुल्क में अगर बत्ती बनाना हो गलो, पापड़ मसाला सिलाई बिनाई सारा के काम को वहां फ्री में सिखावल जाए, साथे साथे ये भी हो कि खान पान भी फ्री में दिया जाए ताकि कोई किसान के विकास हो सके, किसान आगे बढ़ सके। और अधिक जानकारी के लिए अब हम चलो ये स्वयं सहायता समूह के अनुभव के जानो हुई है कि कौन तरी बढ़वार हो उखिन के और उनका से अनुभव लो हुई है।
1: तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार, मेरा नाम है ममता कुमारी।
1: मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं आप?
2: सबसे पहले तो खेत का जुताई करते हैं, उसके बाद खाद डालते हैं, और जब फसल लगाते हैं तो हम लोग केचुआ खाद डालते हैं।
1: अच्छा।
2: उसके बाद फिर जो लगाना रहता है जो बीज वो डालते हैं। नहीं, जैसे हम लोग हर साल इसका खेती करते हैं ना, तो जिस साल फसल बहुत अच्छा हुआ तो उस साल का इसका बीज हम लोग रख लेते हैं।
1: अच्छा।
2: बीहन के तौर पे तो रख लेते हैं, तो हर साल वैसे ही चलते रहता है। इस साल का अगले साल लगाएंगे, फिर अगले साल का अगले साल लगाएंगे, उसी प्रकार इस साल भी लगाए हैं। हम लोग बारी में ही बोरिंग करवा ली है।
1: अच्छा।
2: जिसके कारण आसानी होती है पटाने में, बोरिंग है तो फिर इधर ही से पट ही जाता है, तो पानी का तो कोई दिक्कत होता नहीं है।
1: कैसे आप घर परिवार और खेती बारी पूरा रूप से देख पाते हैं और कैसे करते हैं आप?
2: सुबह उठते हैं, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन हम तो 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठने के बाद अपना जो घर का घरेलू काम हुआ वो करते हैं, उसके बाद घर का काम निपटाते हुए 7-8 बज जाता है, फिर उसके बाद खेत में समय देते हैं। उधर से फिर शाम को आते हैं 4 बजे, उसके बाद फिर खेत में लग जाते हैं। शाम का काम किए 5-6, जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक पानी वगैरह पटाए, उसके बाद फिर अपना घर चले जाते हैं, बच्चों लोग का खाना बनाना है, ये सब तो है, इसी प्रकार मैनेज करते हैं।
1: आय के साथ साथ यदि खर्च का बचत भी हो जाए तो एक तरह का आमदनी होता है। यदि घर पे ही खेती बाड़ी का कार्य हो जाता है, सब्जी जो है घर से ही उत्पादन हो जाती है खेत बाड़ी से, तो क्या राहत हो पाती है?
2: हाँ, बहुत राहत होता है। अभी तो महंगाई में देख ही रहे हैं, सब्जी कितनी महंगी हो गई है, तो इसी तरह अगर घर से होता है तो बहुत राहत है। और खेती जितना भी मेरे अनुसार से सारे भाई बहन लोगों को खेती करना चाहिए। अपने पास जो जमीन है उसको हम लोग क्यों परती रखेंगे, उसी से उपजा के उसी से हम लोगों को इनकम करना चाहिए जो भी है। और खेती करके तो हम बहुत खुश हैं, और सारे लोगों को ये भी बोलते हैं कि अपना जो खेत है उसको कभी ऐसे परती ना रखें, उसको लगाएं और उससे कुछ इनकम कमाएं। खेती लगाने के बाद जो फसल होती है उस फसल को जब हम बेचते हैं अच्छे दामों में, तो उसका जो पैसा आता है उससे हम इकट्ठा काम करते हैं। बाकी जो भी पैसा है थोड़ा बहुत घटता है, तो वो जेएसएलपीएस की दीदी लोग हैं, उन लोगों से ही पैसा लेके हम अपना काम करते हैं।

0: जी।
1: ये जो गीत सुनाई दे रहा है वह उन महिला सदस्यों का है जो एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और एक छत के नीचे बैठी है। प्रगति के राह में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर बन सकता है स्वयं सहायता समूह। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम आए हैं हजारीबाग के कंचनपुर गांव में और आइए सुनते हैं कि स्वयं सहायता समूह से उनके जीवन में क्या बदलाव हुए हैं। जी आपका नाम क्या है?
2: आरती देवी।
1: ये कैसे आया कि हमें महिला समूह बनाना चाहिए?
2: हमारी जरूरतें बहुत थी, इसलिए हमें बहुत तकलीफें उठानी पड़ती थी। पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमें मतलब कि कहीं पैसे नहीं मिलते थे और मतलब क्या कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए हम लोग दूसरों के पास हाथ फैलाने पड़ती थी। इस तरह से मतलब बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां आती थी जिससे परेशान होकर मतलब मेरे दिमाग में क्या आया कि हम भी कोई संगठन ऐसा तैयार करते जिससे मतलब कि ये सारी कठिनाइयों का समाधान होता और मतलब कि इतना परेशानी पैसा की तलाश में इतना परेशानी हमको नहीं झेलना पड़ता और पैसा प्राप्त हो जाता।
3: मेरा नाम शीला देवी है। अभी हो गया कि सीजन आ गया है धान का, डीजल लाने के लिए दिक्कत होता है, खाद लाने के लिए दिक्कत होता है, किसी से नहीं मिल पाता है मदद, तो यही है कि हम लोग कमेटी से मतलब मदद लेके और खेती गृहस्थी करते हैं।
2: मेरा नाम आरती देवी हुआ। एक समय ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड भी कोई काम नहीं कर रहे थे और मतलब कि घर चलाना हम लोग को बहुत मुश्किल हो गया था, तो मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। वो भी घर में बैठ गए और हम भी मतलब कि बच्चों लोग को पढ़ाने से लेके खाने तक को भी मतलब वैसा कुछ भी नहीं रहा हम लोग पास और पैसा आने का कोई स्रोत भी नहीं रहा। तो एकाएक दिमाग में आया कि कोई समिति का गठन करते, इससे हम लोग को कोई हेल्प मिल जाता। और इस तरह से मतलब कि हम समिति का गठन किए और उससे कुछ पैसा लोन लेके मुर्गी फार्म भी मेरे पास था, वो भी मतलब कि खाली पड़ा हुआ था, उसमें भी मेरे पास पूंजी नहीं डालने के वास्ते। इस समिति को चलाने से फिर इससे हम कुछ लोन लिए।

0: 20,000 रुपया, और फिर उसमें मुर्गी डालें, तो उससे मेरा ये मतलब फायदा हुआ कि कुछ इनकम भी आ गया, और फिर इससे मतलब कि पूंजी हम बढ़ाते ही चले गए, और फिर वो पैसा मतलब कि उससे जो मुनाफा हुआ फिर समिति में भी लाके वापस कर दिए, और इस तरह से मेरा घर भी चलने लगा।
1: तो स्वयं सहायता समूह के अनुभव जे हल्थिन जे बतेलथिन वहां के महिला सदस्य सब कि कौन तरी फायदा लो है, इनका से भी सुनिए भाई कि जब इनका आर्थिक मदद यानी कि रुपया पैसा के जरूरत हो है तो कहीं और हाथ फैलावे की जरूरत ना पड़े, सीधे स्वयं सहायता समूह के पास जाके अपन अधिकार से अपन पैसा के लेवो थीन, और कम बहुत ही कम दर पर ऋण वहां पर मतलब मिल जाए, जेकर से कहा है कि खेती बाड़ी हो, बच्चा के पढ़ाई लिखाई हो, या तो रोजी रोजगार हो, सबके वास्ते वहां से पैसा आसानी से मिल जाए और वहां से लाभ लेकर के भी अच्छा से आमदनी हो जाए और चुका भी दो है। ये बहुत ही खुशी के बात है कि इस तरह से ये तरीका जो चले थे जेकर में सरकार भी बहुत पहल कर रहे थे। अगर बात करिए तो JSLPS के तो ओकर में कहा है कि बहुत महिला सब सदस्य सब के मिल करके आज किसान के नया नया उद्योग खोले पे मतलब साथ दल के साथ साथ पशुपालन पे जोर दल के है, जेकर से किसान के हमेशा बढ़ोतरी ही होले हैं। चलते चलते आज बात कर रही है हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जो किसान भाई बहन सबके सालाना 6,000 रुपया उनका सीधा खाता में पहुंचो है, यानी कि हर चार चार महीना में 2,000 रुपया तीन बार तीन किस्त में दिया जाए, जेकर से किसान सबके शुरुआती दौर पर फायदा हो जाए। बात करिए कि बीजा लेवे के या तो खेती की तैयारी करे के तो शुरुआती अगर अच्छा हो जाए तो बाद में भी कहल जा सको कि समापन भी बहुत बेस्ट ढंग से हो जाए। और अगर अधिक जानकारी वास्ते देखा कि कम से कम अपन प्रज्ञा केंद्र में अपन KYC भी करा लेथिन, जे किसान भाई बहन सब अपन योजना के लाभ ले लेथिन, उनका हमेशा ध्यान देवे के चाहिए कि अपन बैंक खाता में KYC रहे के चाहिए और सही खाता में पहुंचे तो के नहीं हमेशा जानकारी रखे के चाहिए। और एकर साथे देखा कि अब जाके वक्त के बेरा भी हो गए है, और ये बता दिए कि हमने के खेतीबाड़ी के कार्यक्रम जो है रोजाना ठीक 5:30 से 6 बजे तक हम इनके कार्यक्रम चलो है, जे किसान के बाद किसान तक पहुंचावल जाए। और साथ ही साथ देखा कि विशेषज्ञ के राय भी रहो है, जेकर में हमके एक अनुभव रहो है कि भाई खेती बाड़ी कौन तरीके करे के चाहिए और कैसे आगे बढ़े के चाहिए। तो एकर साथ अब हमारा जाके बेरा भी हो गए तो हमारा प्रकाश के अनुमति देथिन जोहार।

श्रोता भी सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के 10,000 स्थानों पर युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। माय भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने बताया कि रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि चयनित युवाओं को 14 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय नशा मुक्ति युवा सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। गिरिडीह के नक्षत्र वन में आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने पौधा लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पचम्बा से सटे कल्याणडीह में बनने वाला 28 एकड़ का रॉक गार्डन मॉर्निंग वॉक और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित घोटालों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की धनबाद जिला इकाई ने आज मेमको मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन धनबाद के उपायुक्त को सौंपा।

0: सौंपा। रांची नगर निगम में आज महापौर रोशनी खलको की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित सखवा महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में उप महापौर नीरज कुमार और सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। महापौर ने बताया कि महोत्सव के तहत सखुआ के साथ महुआ, पलाश, कुसुम, डाहू सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। युवा व्यवसायी शुभम साहू की हत्या के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आज लोहरदगा में बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान जिले के प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद रहीं और बस, ट्रक सहित अधिकांश व्यवसायिक वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा, जबकि रेल सेवा सामान्य रही। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा अपराधी फरार हो गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है श्रमिक भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम मेहनत कश।

मेहनत कश कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रमिक भाई बहनों को सूरज का प्यार भरा नमस्कार। श्रमिक भाई बहनों, हमारे आसपास हम जब अपने आसपास देखते हैं तो कुछ लोग मेहनती नज़र आते हैं, बहुत मेहनती नज़र आते हैं, हार्ड वर्किंग लोग मिल जाएंगे हमारे आसपास। उनका व्यक्तित्व अक्सर हमें आकर्षित करता है। ऐसे भी कहा जाता है कि जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो सबको करना ही होता है, लेकिन जो मेहनत अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में फोकस कर लेते हैं उनका व्यक्तित्व खूब आकर्षित करता है। हम अपने आसपास कई ऐसे लोग देख लेंगे जिनके दिनचर्या आप देखिएगा तो सब कुछ व्यवस्थित ढंग से करते हैं और समय पर करते हैं और मेहनत खूब करते हैं, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व हमेशा से आकर्षित करता रहा है। ऐसे वास्तव में जिंदगी की सार्थकता भी मित्रों इस बात में ही है कि अपने काम में खुद को हम फोकस करें। छात्र पढ़ने में, व्यापारी व्यापार में, खिलाड़ी खेल में, गृहिणी घर के कार्यों में जब खुद को फोकस कर लेते हैं तो आसपास एक खुशबू बिखरी रहती है, एक आकर्षण बना रहता है। ये स्थिति सभी को पसंद आती है, हम में से सभी को, और लोग आपस में ये चर्चा भी करते हैं, बातें भी करते हैं कि वो व्यक्ति बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को कर रहा है। श्रमिक भाई बहनों, अच्छे सच्चे और मेहनती व्यक्ति को हर ओर से प्रोत्साहन मिलता है और सफलता भी उसे ही मिलती है जो इस राह पर चलते हैं। तो हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम इस तरह से चले, इस तरह से आगे बढ़े, अपने आप को खुद को फोकस रखें। जीवन में बहुत योग्य व्यक्ति भी कई बार होता है कि वो अपने आप को सफल नहीं कर पाते, इसके पीछे का कारण यह है कि वो किसी एक जगह खुद को फोकस करने में कामयाब नहीं रहे हैं। हम अपने आप को बिखेर कर नहीं, हम अपने आप को समेट कर एक जगह फोकस करें तो हम अपने काम में भी परफेक्ट होंगे और हमें अपेक्षित सफलता भी मिलेगी। बहरहाल, इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए देते हैं विराम। एक खूबसूरत सा गीत पहले आप सभी को सुनवाते हैं, और भी बातें होंगी कार्यक्रम में, और एक भेंट वार्ता भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी आपके साथ हम साझा करेंगे।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
5: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का। 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: मेहनत कश कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाइयों और बहनों, ये हम जानते हैं कि सरकार ग्रामीण विकास को लेकर हमेशा से ही प्रयासरत रही है कि बेहतरीन कार्य हो, तो आज थोड़ी चर्चा हम करेंगे। ऐसे तो कई तरह की योजनाएं देश में लागू हैं, लेकिन इसमें से एक है VVG रामजी योजना। और इससे पहले हम बता दें कि यह जो विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी है, MG मनरेगा का स्थान लेने वाली यह एक नई रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना है। और इस योजना के बारे में हम आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2026 से और पूरे भारत में इसी दिन से लागू हो गई है। और इसके तहत कहीं ग्रामीण परिवारों को साल में 100 के स्थान पर अब 125 दिन के गारंटी के साथ रोजगार मिलता है और 300 रुपया प्रतिदिन तक इसमें मजदूरी का प्रावधान है। केंद्र और राज्यों का जो अनुपात है इसमें, जो खर्च का जो अनुपात है, वो 60 और 40 का है। मतलब 60 केंद्र सरकार वहन करती है और 40 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी राज्यों की बात करें, तो यह अनुपात 90 और 10 का है। यानी केंद्र 90% और राज्य इसमें 10% इसकी सहभागिता रहती है। और बहुत ही लोकप्रिय ये योजना है ग्रामीण विकास से संबंधित। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रोजगार की गारंटी है और यही चीज़ें हैं जो लोगों को आकर्षित भी करती हैं और लोग इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। अब देखिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में आज हम आपके लिए एक भेंट वार्ता लेकर आए हैं कि इलेक्ट्रिक वायरिंग के क्षेत्र में भी रोजगार आप अपना सकते हैं, और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद खालिद, और इनसे बातचीत की है मोहम्मद अली शबीर अंसारी ने। तो इस बातचीत को सुनते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। जिस तरह अभी कई जानकारी हम मिली, जैसे अभी हम जानकारी ले रहे थे ये रोजगार गारंटी योजना के बारे में कि इसका कितना फायदा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मिल रहा है, उसी तरह से रोजगार की एक ये बातचीत भी है और इलेक्ट्रिक वायरिंग के क्षेत्र में रोजगार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर जानकारी लेते हैं।
1: से जज्बे को उड़ान मिलता है, हौसलों से जज्बे को उड़ान मिलता है, किसी को जमीन

0: इतना रूम है, क्या लेना है क्या देना है, तो अपना
1: वो तो
0: देख
1: आपका
0: के। हाँ
1: अपना हो गया, बातचीत हो गई किसमें कितना लोगों ने तय किया है उसके हिसाब से। जैसे आप तो फिर रूम आपने लिया है तो कितने दिनों में आपको समय लगता है उसको कंप्लीट करके वायरिंग दे देने में, किस तरह से आप उसको पूरा करते हैं?
0: जैसे मकान मालिक रूम हमको मांग रहा है कि हम 10 दिन में तैयार चाहिए, तो उसको हम 9 ही दिन में दे देंगे।
1: अच्छा, उसके लिए मतलब क्या मेहनत
0: उसके
1: पूरी दिन
0: लिए
1: रात काम करना होगा?
0: है कि मेहनत लगता है थोड़ा, तो मेहनत के बाद फिर हो ही जाता है।
1: आप अकेले काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ हेल्पर भी हैं?
0: नहीं, हम अकेले करते हैं।
1: तो अकेले करने में जैसे दीवार वगैरह कटिंग करना होता है या फिर तार का भी आपका कटिंग वगैरह करना होता है, कहाँ से कैसे, ये कैसे संभव हो पाता है अकेले?
0: हो जाता है, ज्यादा लड़का लोग को रखने से परेशानी है। एक तो काम ढंग से होगा नहीं। चार, अगर 2 से 4 लड़का रखे हैं तो उधर गप मारे हुए, उधर मारे हुए, इसलिए अकेले काम करने का मजा ही कुछ और है।
1: तो खुद जिम्मेदारी के साथ एक आदमी अगर काम कर रहा होता है तो पूरा उसको ध्यान भी रहता है कि हमको कहाँ कैसा क्या करना है, और काम सक्सेसफुली वो सही साफ सुथरा उतरता है। तो खाली जी हम ये जाने जैसे 2 रूम है या 4 रूम का है, तो उसमें आपने खैर बता दिया कि 10 दिन का हमने टाइम लिया है तो हमको 9 ही दिन में दे देते हैं, है ना? अच्छा, इसमें कुछ औजार की भी जरूरत पड़ती है ना, किस तरह की
0: जी,
1: औजार?
0: जैसे दीवार के अंडरग्राउंड वायरिंग होता है तो कटर मशीन चाहिए, छेनी हथौड़ी,
1: अच्छा,
0: यही सब से कटता है दीवार।
1: जैसे दीवार काटते हैं, और कुछ औजार की जरूरत होती है
0: नहीं, और कुछ नहीं।
1: ना? तो अगर कोई नए लड़के अगर हैं इस लाइन में अगर आना चाहेंगे, जानकारी अगर तो इलेक्ट्रिशियन का वायरिंग का काम अगर करना चाहेंगे तो उसको किस तरह से आना पड़ेगा, इसमें आ सकते हैं?
0: इसमें पहले तो उसको कुछ दिन, एक आध महीना साथ में उसको रहना पड़ेगा।
1: किसी अच्छे कारीगर के साथ उसको रहना
0: हाँ,
1: पड़ता है।
0: और देखना पड़ेगा कि कौन चीज़ वो कहाँ कर रहे हैं, वो चीज़ कैसे हो रहा है, उस पर उसको ध्यान देना पड़ेगा।
1: ये उसको उसमें मेहनत करना है और उसको ध्यान देना है। तो अगर जो लड़के हैं नए इस लाइन में कराना चाहेंगे तो क्या उसके लिए भविष्य इसमें कैसा है, दिखता है?
0: इसमें भविष्य भविष्य बहुत सुंदर है। अगर वो चाहे आना तो एकदम शौक से आइए।
1: है ना, तो उसमें अच्छा आमदनी है, अच्छा मतलब रोजगार का ये जरिया है, बन सकता है।
0: रोजगार बहुत बढ़िया रोजगार है।
1: तो खाली जी आपने इलेक्ट्रिक वायरिंग के संबंध जो बातें हमको बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मोहम्मद खालिद से अली शब्बीर अंसारी की बातचीत आप सुन रहे थे। वायरिंग के क्षेत्र में भी रोजगार का बेहतर जरिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से जो इस पेशे में, इस कार्य में जाना चाहते हैं, जो बच्चे लड़के इसमें करियर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। और ऐसे भी धीरे धीरे देखिए, जैसे इस बातचीत में भी आपको पता चला कि शुरुआत तो मतलब हेल्पर के रूप में आपको करनी होगी, इसके बाद आप धीरे धीरे काम करते हैं, समर्पण के साथ कार्य करते हैं, तो फिर अपने क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और अपने आप में एक अच्छा रोजगार है। और इस रोजगार में बहुत सारे लोग आज अच्छी आमदनी कर रहे हैं, और न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रहे हैं, अपने परिवार को खुशहाल रख रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा खर्च वो इसी कार्य से निकालते हैं, तो एक बेहतर रोजगार का जरिया है। और बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आप कहाँ कहाँ किस तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम चलते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे भी कहते हैं ना कि जो अपने काम में फोकस करता है उससे मतलब उसकी ज़िंदगी खुशहाल रहती है। इधर उधर की बातों से खुद को समेट कर अपने काम में फोकस करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, ये प्रोग्राम का समय लगभग समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते खूबसूरत सा गीत हम आपको और सुनवा रहे हैं।

तो श्रोता साथियों, इसी खूबसूरत से गाने के साथ मेहनत कश कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो चुका है। तो आज के इस कार्यक्रम से सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे श्रमिक भाई बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम मेहनतकश। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आनंद उठाते हैं फिल्मों से लिए गए कुछ गीतों का। कार्यक्रम है फिल्म संगीत।

फरिश्ते फिल्म में भी आप सुन रहे थे अमित कुमार, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम बता दे दोस्तों आपको, इसे हमने लिया है फिल्म मेहरबान से।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोता साथियों, उदित नारायण और साधना सरगम के गाए इसी गाने के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने रांची केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्यघर।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत देशभर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। रांची में तैयारी पूरी। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए की कम। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल से जुड़े कारोबारियों को राहत। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुलाई में 1,20,000 से अधिक वाहनों का काटा चालान। 7,80,00,000 रुपए का लगाया जुर्माना। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 अगस्त से देवघर से दुमका के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, आदेश जारी। और नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरी वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अंश, तेजस्वी और रोनिका ने देश के लिए जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के 10,000 स्थानों पर युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। माय भारत की राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने बताया कि रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा।
7: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत थीम के ऊपर 8 तरह का कम्पिटिटिव

0: इंटरेक्टिव इवेंट आयोजित किया गया है। जो जिला स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो सारे बच्चे हमारे राज्य स्तरीय कंपटीशन में भाग लेंगे और राज्य स्तर पे कंपटीशन में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे 14 अगस्त को कार्यक्रम है जिसमें भाग लेंगे।
1: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी है। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: रांची की ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई 2026 के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 1,20,000 से अधिक चालान काटे। इन मामलों में लगभग 7,80,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,000 से अधिक मामलों को अभियोजन के लिए न्यायालय भेजा गया। झारखंड सरकार ने जाति सूचक और अपमानजनक नामों को हटाने के लिए नया अधिनियम अधिसूचित किया है, जिसके तहत अब सड़कों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण में भेदभाव वाले शब्दों पर रोक लगेगी। नए नियमों के अनुसार किसी भी जगह का नाम बदलने के लिए 30 दिन के भीतर नगरपालिका या जिला प्रशासन को प्रस्ताव देना होगा और आपत्ति मिलने पर गठित समिति 90 दिन में निर्णय लेगी। 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आज रांची के सदर अस्पताल में राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों और अधिकारियों ने माताओं को बताया कि जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाने से नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण का खतरा कम होता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
4: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
3: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
4: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
3: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
4: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झारखंड सरकार 4 अगस्त से देवघर से दुमका के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगी। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए प्रति यात्री किराया 2,850 रुपए से लेकर 4,500 रुपए के बीच निर्धारित किया गया है। सावन की पहली सोमवारी को लेकर रांची पुलिस ने शहर के प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर व्यापक सुरक्षा एवं ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी तथा CCTV, बाइक पेट्रोलिंग और सादे लिबास में पुलिसकर्मियों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। पहाड़ी मंदिर के आसपास भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। गिरिडीह के

0: छत्रवन में आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने पौधे लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पचम्बा से सटे कल्याणडीह में बनने वाला 28 एकड़ का रॉक गार्डन मॉर्निंग वॉक और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
1: शहर से बिल्कुल सटे हुए 28 एकड़ का यह भूभाग वास्तव में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित। यहाँ पर बनने वाले इस रॉक गार्डन से पचम्बा वासियों को खास करके लाभ होगा। सुबह शाम जब वो टहलने के लिए सोचेंगे, उनके पास नगर वन जैसा एक विकल्प होगा, जहाँ पर शुद्ध वायु में सांस लेते हुए वो सुबह शाम टहलने का काम कर सकेंगे।
0: रांची नगर निगम में आज महापौर रोशनी खलको की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावित सखुआ महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। महापौर ने बताया कि महोत्सव के तहत सखुआ के साथ महुआ, पलाश, कुसुम और डाहू सहित स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे।
2: सखुआ महोत्सव हम लोग करने के लिए उत्साहित भी है। एक जगह का चयन हो जाए जहाँ पर हम लोग पर्याप्त रूप से ज्यादा पेड़ लगा सके, उसमें सखुआ को हम लोग लीडिंग पोजीशन पर रख रहे हैं। लेकिन हर तरह के पेड़ जो हमारे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, सारे तरह के पेड़ हम लोग लगाने के बारे में सोच रही है। एकीसो महादेव जब खोजा गया है, कहीं ना कहीं वो झाड़ियों की वजह से छिप गए थे। ऐसे पर्यटक स्थल को एक एक कोने कोने में पहुँचा सके, उसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
0: जमशेदपुर के दो मुहानी नदी संगम तट पर एक पौधा भविष्य के नाम अभियान के तहत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और पद्मश्री चार्मी मुर्मू ने पौधारोपण किया। पद्मश्री चार्मी मुर्मू ने कहा कि आज लगाया गया हर पौधा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की अमूल्य पूंजी है।
3: पहले विरोध होता था पेड़ पौधा लगाने से, हमारा जमीन सरकार ले लेगी, बंजर भूमि में एक पौधा लगाने से बैल कहाँ चराएंगे। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि आज हमारे स्कूल बच्चे, हमारे नेता मंत्री सभी पौधा लगाने में अपना भूमिका निभा रही है। लगता है कि अभी इस हमारे क्षेत्र में वातावरण को बदलने का अवसर आ गया है।
0: नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरी वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड के अंश कुमार सिंह, तेजस्वी कुमार और रोनिका राशि ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। 11 देशों के भागीदारी वाली इस प्रतियोगिता में तीनों खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ था। विजेता खिलाड़ी 4 अगस्त को रांची लौटेंगे, जहां उनके सम्मान में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत देश भर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। रांची में तैयारी पूरी। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए की कम। रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल से जुड़े कारोबारियों को राहत। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुलाई में 1,20,000 से अधिक वाहनों का काटा चालान। 7,80,00,000 रुपए का लगाया जुर्माना। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 अगस्त से देवघर से दुमका के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, आदेश जारी। और नेपाल के काठमांडू में आयोजित तीसरी वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के अंश, तेजस्वी और रोनिका ने देश के लिए जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: रांची के धुरा स्थित पुराना विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सुरक्षा, वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियां विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार को इस संबंध में ठोस नीति बनाने की

0: जरूरत है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के द्वारा किए गए अपराध के अनुरूप उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए।
1: साइबर फ्रॉड के बारे में सरकार के तरफ से चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे राज्य का सरकार हो, एक ठोस नीति बनना चाहिए ताकि अगर साइबर फ्रॉड में कोई व्यक्ति अगर पकड़ाए कठोर से कठोर
0: साझा
1: होना चाहिए।
0: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में काफी हद तक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब जनसंख्या की नहीं बल्कि जनशक्ति की जरूरत है।
2: अब आबादी में हम लोग कंट्रोल है, लेकिन चैलेंज है उन तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम पहुंचाए, ये हमारा फोकस है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और खासकर के 42,000 जो सैया बहने हैं, मैंने उनसे कहा आप पर बहुत बड़ी जवाबदेही है कि जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करें, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हस्पताल कैसे पहुंचाए, ममता वाहन को ठीक कैसे करें।
0: रांची के अडरे हाउस में 2 दिवसीय जलवायु अखाड़ा का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि छोटे छोटे और निरंतर प्रयास करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जारी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए समाज के सभी स्टेक होल्डर को एक मंच पर आना आज सबसे बड़ी जरूरत है। रांची विश्वविद्यालय ने अपना 67वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। वर्ष 1960 में स्थापित रांची विश्वविद्यालय ने अपनी गौरवशाली शैक्षणिक यात्रा के 67 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया। विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सरोज शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, फाइन आर्ट्स और शोध को भी समान महत्व जा रहा है।
3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कहती है कि करिकुलम सिर्फ पढ़ना नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, उसके साथ साथ कला, संस्कृति, गीत, संगीत, फाइन आर्ट्स ये सब है।
0: समारोह में उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रांची विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
5: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 MHz पर श्रोता हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हुए हैं। लीजिए पेश है करियर सलाह पर आधारित हमारा कार्यक्रम नवचेतना। संकलन एवं वाचन है अंजना बाखला का, प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

नवचेतना कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सभी सुनने वालों को अंजना का नमस्कार। श्रोताओं, बेहतर जीवन के लिए युवा करियर को लेकर कई योजनाएं बनाते हैं। इन योजनाओं को सही दिशा में लेकर जाना, करियर प्लान पर फोकस करना सबसे अहम होता है। इसके लिए समय प्रबंधन सबसे जरूरी है। यह जीवन में समय पर सही काम करने की एक कला है। समय प्रबंधन का अर्थ है अपने पास जो भी समय है उसकी उपयोगिता को समझते हुए सही योजनाओं और प्राथमिकताओं में उसे बांटना। इसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। योजना के अनुसार सही वक्त पर सारे कार्य होने से तनाव कम होता है, साथ ही यह लक्ष्य प्राप्त करने में मदद भी करता है। अवसरों का लाभ उठाना हो तो अपने दैनिक जीवन में समय प्रबंधन को महत्व देना चाहिए। यह आत्म अनुशासन की ओर ले जाता है और जहां अनुशासन होगा वहां

0: लक्ष्य प्राप्त करना भी आसान होगा। युवा श्रोताओं, करियर बनाने के लिए समय का जितना अधिक महत्व है, उतना ही जरूरी है सही मार्गदर्शन। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुभवी शिक्षकों का भी योगदान होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग विषयों पर भी चर्चा करते हैं। आप किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, या निर्भर करता है कि आपकी रुचि किन विषयों में है। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की, यानी सामाजिक विज्ञान की। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मॉन्टफोर्ट स्कूल के अनुभवी शिक्षक अमरजीत कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे करियर निर्माण में सोशल साइंस विषय की क्या भूमिका है।
1: मैम, सोशल साइंस मानव समाज, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, संस्कृति, शासन, अर्थव्यवस्था तथा मानव व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है। इसलिए यह शैक्षणिक विषय ही नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, निर्णय क्षमता और करियर निर्माण की मजबूत नींव तैयार करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से हम जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सोशल साइंस को केवल परीक्षा में सफलता दिलाने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि उन्हें एक जागरूक, जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनाकर प्रशासन, शिक्षा, कानून, पत्रकारिता, शोध, सामाजिक सेवा और अन्य कई क्षेत्रों में सफल करियर बनाने को तैयार करता है। काफी लोगों का मानना है कि 12th में आस रखने के बाद स्टूडेंट के पास बहुत कम करियर ऑप्शन होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अगर हम लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो CLAT एक एग्जाम होता है, CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये CLAT क्लियरिफाई करने के बाद आप टॉप लेवल के यूनिवर्सिटीज, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे आप दाखिला ले सकते हैं, जहाँ की सैलरी 20 से 22 लाख के लगभग में होती है। जैसे बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जैसे खैतान है, SNR एसोसिएट है, SZB पार्टनर्स है, ट्राई लीगल है, इंडस लॉज है, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जहां अच्छे पैकेज पर लीगल कंसल्टेंट वो हायर करती है। और अगर हम गवर्नमेंट नौकरी में अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग LLB कर लेंगे, और LLB करने के बाद हम ज्यूडिशियल एग्जाम भी दे सकते हैं स्टेट ज्यूडिशियरी के लिए। और दूसरा है कि अगर हम लोग BA करना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स करने के बाद, फिर हम लोग 3 साल का एक LLB कोर्स कर लेते हैं जो 3 साल का होता है। लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स चाहते हैं तो वो 5 सालों का होता है, जहाँ पे हम लोग उसको कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट लॉयर भी बन सकते हैं। दूसरा है मैम कि UPSC में इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है। तीसरा, अगर हम जर्नलिज्म और मीडिया की बात करते हैं तो हालांकि आजकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कुछ ज्यादा पड़ रहा है सोसाइटी में और गुड जर्नलिस्ट की कमी होने लगी है, तो हम इसमें बेहतर ऑप्शन जा सकते हैं। आज भी बड़े अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी सैलरी बहुत हाई होती है, हम छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं इसके लिए, तो हमारे भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हम एक दो का नाम बताएंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास एंड कम्युनिकेशन जो दिल्ली में है, सिम्बायोसिस जो पुणे में है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म जो पुणे में ही है, संत जेवियर जो मुंबई में है, माइका अहमदाबाद में, ऐसी ना जाने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसकी अच्छी तैयारी करवाती है और अच्छा पैकेज भी देती है। इंटरेस्ट मेरा अगर होटल मैनेजमेंट में है तो आप आराम से अच्छी सैलरी पा सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस भी होती हैं। जैसे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो पूसा न्यू दिल्ली में है, और फिर यही IHM जो मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेजेस खोली इस मैनेजमेंट को लेकर के। अगर हम प्राइवेट और कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो ओबराय सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट दिल्ली जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये भी बहुत फेमस है। तीसरा, अगर हम बात करें कि BBA करना है तो BBA करने के बाद हम MBA कर सकते हैं और ग्लोबल लेवल की कंपनियों में अच्छी सैलरी पा सकते हैं। अगला ऑप्शन खुल जाता है मैम हमारे पास कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उनको शायद इनकी समझ है कि हम पेंटिंग में, मूर्तिकला में या फोटोग्राफी में बहुत अच्छा जॉब पा सकते हैं। बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत क्रिएटिव है और कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन है। मैम, आज की युवा जो है मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा गुजर रही है और इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत कमी है, जिसको कोर्स करने के बाद बहुत सारी कॉलेजेस है हमारी कंट्री में साइकोलॉजिस्ट का कोर्स करवाती है, और जहाँ पे एक अपना अगर क्लिनिक खोल देते हैं तो हम जॉब खुद से कर सकते हैं और हमें किसी पे निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा और इसकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड भी है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग हमारे पास है कि बीए करने के बाद सिंपल अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो और अगर फिर आप बीएड कर लेते हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं।
0: सर आगे ये भी हम जानना चाहेंगे कि यूपीएससी और राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान विषय का चुनाव

0: करते हैं तो परीक्षाओं की तैयारी में किन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी विद्यार्थियों को?
1: जैसे यूपीएससी की हम बात करते हैं तो ये दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में एक होती है। इसमें हर साल बच्चे लगभग 6 लाख बच्चे अपियर होते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो 1000 बच्चा सक्सेस होता है, सफल हो जाता है। लेकिन हम अगर सोशल साइंस की इसमें भूमिका की बात करते हैं तो ये सर्वे है कि 80-85% जो बच्चे हैं वो सोशल साइंस को ही मेन सब्जेक्ट या फिर उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए सोशल साइंस को हम लोग बेस बना सकते हैं और आसपास जो हो रहे देश विदेश में घटना है उस पे हम लोगों को बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम भारतीय इतिहास के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं तो उसमें हम डेट और इवेंट्स की जानकारी नहीं रखते हैं, हमें इसके साथ जानना पड़ता है सबसे मेन रीजन जो होता है कि इसका क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा, इसका क्या प्रभाव है और ऐतिहासिक संदर्भ में इसका हमें समझना बहुत जरूरी है। दूसरा हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी को मैप के साथ साथ पढ़ना चाहिए। जैसे मैप में हम हिल्स के बारे में है, माउंटेन्स है, रिसोर्सेस, क्लाइमेट, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, सभी चीजों को हम लोग अगर मैप से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सफल और सजग हो जाता है हमारे लिए। फिर हम इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हैं तो इसमें हम लोग मेन थीम जैसे हम लोग जीडीपी, इंडिया का जीडीपी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तो वर्तमान घटनाओं से जोड़कर हमें सभी चीजों को समझना चाहिए। और इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है करंट अफेयर्स, इस पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए बच्चों को। समाचार केवल पढ़ना नहीं है बल्कि यह समझना चाहिए कि किसी घटना का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय इसका क्या प्रभाव है। और हमें इसके एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमेशा देखते रहना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो किस लेवल पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
0: सोशल साइंस सब्जेक्ट को लेकर अगर शिक्षण एवं एकेडमिक क्षेत्र में करियर बनाना हो तो विद्यार्थियों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
1: सबसे पहले तो एक शिक्षक को अपने विषय की ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी होता है, विषय की मजबूत समझ होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी तरह का लेवल का क्वेश्चन पूछे तो टीचर को उसका आंसर पता होना चाहिए, अगर नहीं तो उसको शालीनता से जवाब देना चाहिए। सबसे पहले की उच्च शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे अगर कोई टीचर स्नातक किए हो तो उसको चाहिए कि हम आगे मास्टर की डिग्री कैसे कर ले या फिर उसके आगे बाद हम नेट की तैयारी कर ले या नेट का प्रिपरेशन करे, नेट का पेपर क्लियरिफाई कर ले, पीएचडी करे। तीसरा कि हम लोग डिफरेंट स्किल्स, टीचिंग स्किल्स हर बच्चे एक जैसा नहीं समझते हैं, कोई बच्चे मैप से अच्छा समझते हैं, कोई बच्चे मॉडल से समझते हैं, कोई बच्चे थ्योरी से समझते हैं, कोई बच्चे डायग्राम से समझते हैं, तो एक टीचर को एक अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए शिक्षक को कि कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो उसको सरलता के साथ स्पष्ट और प्रभावी ढंग से बच्चों को समझा सके। फिर हमें निरंतर सीखने की आदत होनी चाहिए क्योंकि बच्चे अब हमेशा अपग्रेड होते रहते, आगे चीजों को सीखते रहते हैं, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, निरंतर सीखने की आदत होनी चाहिए हम शिक्षकों को। और उसके बाद आजकल डिजिटल पैनल जो हमारे हर क्लासरूम में लगा होता है तो डिजिटल पैनल्स को भी एआई को जो भी सोसाइटी में चलता है तो हम एआई का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो टीचर्स को इसका मतलब अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए।
0: अवसर को सफलता में बदलना हो तो संदेश के रूप में आप हमारे युवा श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: जीवन में अवसर हर किसी के दरवाजे पे दस्तक देता है लेकिन उसे सफलता में बदलना हमारे प्रयास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। इसलिए अवसर का इंतजार मत कीजिए बल्कि अपनी क्षमता को पहचानिए और हर अवसर को सीखने और आगे बढ़ने के रूप में स्वीकार करिए। असफलताओं से बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करिए, मेहनत को निरंतर जारी रखिए और स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए। याद रखिए अवसर आपको शुरुआत दे सकता है लेकिन आपका जो मेहनत है वही सफलता में बदल सकती है।
0: एक मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण बातों को आपने हमारे साथ साझा किया। हमारे इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर्स में आइए जानते हैं समसामयिक घटनाक्रमों को जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित प्राचीन बौद्ध विरासत स्थल सारनाथ को 26 जुलाई 2026 को विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ब्रुकफील्ड ने 30 जुलाई 2026 को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए लुमारा नाम से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए करीब $600 मिलियन का निवेश सौर, पवन और बैटरी स्टोरेज परियोजना में किया जाएगा। इससे भारत के ऊर्जा ढांचे में बड़े पैमाने पर हरित परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। पंजाब कक्षा 1 से 12 तक AI को अनिवार्य विषय बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। ICAR CMFRI ने समुद्री मत्स्य डेटा संग्रह हेतु दीप डाटा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। CMFRI का मुख्यालय कोची केरल में स्थित है। भारतीय शतरंज के दिग्गज और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने 24 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। युवा श्रोताओं, आइए जानते हैं कुछ रिक्तियों के बारे में जिनके आवेदन करने की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। संघ लोक सेवा आयोग ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल एवं वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। कुल पद हैं 828। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2026। आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है upsc.gov.in। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में असिस्टेंट स्टेनोग्राफर समेत अन्य पदों पर आवेदन करने का मौका है। आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। कुल पद 244 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 अगस्त 2026। वेबसाइट है isro.gov.in। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है। कुल पद हैं 395। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2026। श्रोताओं, आपसे निवेदन है, आवेदन करने से पहले इनसे संबंधित जानकारी समाचार पत्रों या वेबसाइट से अवश्य कर लें। आपको हमारा आज का अंक कैसा लगा? कार्यक्रम नव चेतना के लिए आप अपने विचारों को हमसे साझा कर सकते हैं। इसके लिए हमारा छोटा सा पता नोट करें। कार्यक्रम नव चेतना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड है 825301। श्रोताओं, कार्यक्रम नव चेतना के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। अब आज के इस अंक के साथ दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।
2: श्रोता भी सुन रहे थे करियर सलाह पर आधारित हमारा कार्यक्रम नव चेतना। संकलन व वाचन अंजना बाखला का था। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और इस कार्यक्रम के संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। इसी के साथ ही हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 7:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, जो पेश है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी

0: गच लगाओ गच बचाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: संध्या बहन बटले
1: जोहार। ई कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कहो का हाल चाल है?
4: हमर हाल चाल तो एकदम नगद है भाई, अपन दने बताऊ।
3: हमरो हाल चाल ठीके है और आसरा करी ले कि हमर किसान भाई बहन मन भी जे सुनत हो से मन कर भी हाल चाल बढ़िया होगी। और देखो एखन बरसात कर मौसम है और भरखर खेती बाड़ी कर बेरा है, अपन और अपन परिवार के बेस तरी राखे बेरा भी है। काल के जीव जहान बेस रही तभी तो किसान भाई बहन मन बेस तरी काम काज करे पारवे।
4: सही कहा थी भाई, खेती तो हमर ठेना सालों भर करल जाए है नी, बेस उपज भेटाई इकर लगिन खेत कर ध्यान हो राखे पड़ी, खेत कर माटी कर जांच हो बेरा बेरा से करवाए चाहिए, जेकर से ई पता चली कि हमरे कर खेत कर माटी में कोनो कमी तो नखे।
3: हाँ सही बात के कहली बहन, काल के माटी जांच करवाए बहुत जरूरी है। एगो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जेकर माध्यम से माटी कर गुण और उकर पोषक तत्व कर पता चलेला। और कोनो कोनो बेरा ऐसा भी होवेला कि बगरा मात्रा में रासायनिक खाद कर प्रयोग कर ले माटी कर उर्वरा शक्ति जे के कहे ना है ने उ खत्म हो जाएला और माटी जहाँ से पता चलेला कि खेत में कौन कौन पोषक तत्व मन कर जरूरत है तो वही आधार से किसान भाई बहन मन उचित मात्रा में उर्वरक कर प्रयोग कर सके ना का।
4: सही कहा थी, संतुलित मात्रा में उर्वरक कर प्रयोग करे से फसल बेस बढ़ेला और उत्पादन बगरा होवेला, संगे है किसान भाई बहन मन कर खर्चा कम होवेला, माटी कर उर्वरता लंबा समय तक बनल रहेला, पर्यावरण उपरे पड़े वाला दुष्प्रभाव हो कम होवेला। माटी जांच से माटी कर प्रकार और उकर क्षमता पता चलेला, इकर आधार में किसान भाई बहन फैसला कर सके ना कि उनकर खेत लगिन कौन फसल बेस होगी।
3: और देखो संध्या बहन, सरकार बटले भी किसान भाई बहन मन के माटी कर गुणवत्ता कर जानकारी देवे के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कर भी शुरुआत करल गेलक है और इकर अंतर्गत उनके को कार्ड मिलेला करवाए खातिर और कार्ड में माटी कर स्थिति और जरूरी उर्वरक कर जानकारी देवल जाएला। ई योजना किसान मन के वैज्ञानिक खेती लगिन प्रेरित करेला।
4: हाँ भाई, तो किसान भाई बहन मन इकर लाभ उठावे और देखो गोइठ बात हमरे करते रहब, अब कार्यक्रम के हो आगे बढ़ेला।
3: तो देखो ई कार्यक्रम में हमरे का जानकारी करब से के बता देव थे। सबसे पहले हमरे आज की बात से कार्यक्रम कर और करब। आज की बात में आज हमरे जानब धान रोपाई कर उचित विधि और उकर देखभाल कैसे करल जाए से कर बारे में विशेषज्ञ होवे डॉक्टर परवेज आलम और कृषि विकास गीत सुनब कुरमाली भाषा में, कलाकार होवे अजीत कुमार महतो और संगीमन और नई उम्र की नई फसल में एगो किसान पन्नू उराव से रवरन के भेंट भी करवाओ।
4: हाँ तो भाई जानकारी कर संग और करीला हमरे जानब धान रोपाई कर उचित विधि और उकर देखभाल का तरीके होई इकर बारे बतात है डॉक्टर परवेज आलम और इनकर से बतियाए हैं कृष्ण जीवन भाई।
3: किसान साथियों, धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और अच्छी उपज के लिए सही समय पर रोपाई, उचित दूरी, संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा समय समय पर फसल की देखभाल बहुत आवश्यक है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परवेज आलम, एसोसिएट प्रोफेसर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार है।
5: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि धान की रोपाई के लिए सबसे अच्छी प्रभेद कौन कौन सी होती है?
5: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अगर किसान भाई धान की खेती करना चाह रहे हैं और उनके पास जो जमीन है, जो संसाधन है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी धान का प्रभेद वो लगा लेंगे और उनको उचित मुनाफा मिल जाएगा। तो धान का प्रभेद जो है वो चुनाव करें अपने जमीन के हिसाब से, यानी पानी की उपलब्धता के हिसाब से, तो सबसे पहले तो हम जहाँ पर मान लीजिए पानी कम है किसान के पास, तो वहाँ पे हम किसान भाई को सलाह देते हैं कि आप यहाँ पे कम ड्यूरेशन का धान का प्रभेद, ये जो कम दिन में पक के तैयार हो, जैसे सहभागी धान है ना
3: जी,
5: नवीन है, या बिरसा का जो धान का जो सीरीज है वो सब आप लगा सकते हैं। खास करके सहभागी और नवीन जो है ये बहुत अच्छा कर रहा है हमारे झारखंड में, ठीक है
3: जी,
5: और ये 100 से 120 दिन में पक के तैयार भी हो जाता है। दूसरा, सहभागी धान का एक खासियत ये भी है कि ये थोड़ा बहुत जो सूखा अवरोधी किस्म वैरायटी है, प्रभेद है, तो अगर सूखा भी थोड़ा आता है तो इसको ये झेल लेता है, यानी किसान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरा हम लोग बोलते हैं मध्यम ड्यूरेशन का है ना, जो 120 से 135 दिन में

0: पक के तैयार हो जाता है। ये उन किसानों के लिए अच्छा है जिनके पास पानी का स्रोत बहुत दिन तक उपलब्ध है,
1: जी
0: यानी जब चाहें तो वो खेत में पानी दे सकते हैं। और इसके लिए हम लोग दो तीन वैरायटी, जैसे स्वर्णा है, MTU 1010 है, एक सबसे पुरानी वैरायटी बहुत दिन से चली आ रही है, IR 64 को भी लोग लगाते हैं, एंड राजेंद्रा महसूरी को भी हम लोग लगा सकते हैं झारखंड में। और अंतिम में वैसा जमीन जो सबसे निचला जमीन जो होता है जहां पे पानी कभी सूखता ही नहीं है, है ना, तो उस जगह पे हम लोग कहते हैं किसान भाई को कि आप यहाँ पर सबसे लंबी दूरी की दिन में पकने वाली वैरायटी को यहाँ पे डालिए। उसमें सबसे प्रथम नाम है स्वर्णा सब1 का, जो कि फ्लड टॉलरेंस है, मतलब बाढ़ से उसको नुकसान नहीं होता है, है ना। और CR धान भी जो है यहाँ पर अच्छा करता है। तो इस तरह से हम आपको बताएं कि किसान के पास देख लें किस तरह की जमीन है ना, उस हिसाब से प्रभेदों का चुनाव करें।
1: अभी तो आपने प्रभेदों के बारे में बताया, अब आगे हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि धान रोपाई के लिए बीज दर क्या होनी चाहिए।
0: देखिए, धान को हम लोग ऐसे तो बहुत तरह से लगाते हैं
1: जी,
0: लेकिन उसमें सबसे जो प्रमुख है, जो झारखंड में हमारे किसान भाई अक्सर उसको यूज करते हैं, वो है कि रोपा विधि। तो रोपा विधि में हम लोग कहते हैं कि 25 से 30 केजी जो है धान का बिचड़ा जो है वो 1 हेक्टेयर के लिए
1: जी
0: उपयुक्त है। दूसरा एक और भी आया है कि अभी हम लोग नया टेक्नोलॉजी जो झारखंड में किसान भाई को प्रमोट कर रहे हैं, किसान भाई को बार बार कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट सीधे राइस लगाइए, है ना। यानी जैसे पहले आप बिचड़ा उगाते हैं, बिचड़ा जब 20-25 दिन का हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको ले जा करके खेत में रोपते हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट सीड को ही लगा दीजिए, है ना। तो अगर डायरेक्ट सीडेड किसान भाई खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बीज दर ज्यादा लगता है, 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर लगता है। लेकिन कुछ किसान भाई हमारे प्रगतिशील किसान भाई हैं जो जागरूक हैं, वो हाइब्रिड धान का भी खेती करते हैं, है ना। तो हाइब्रिड धान की खेती कर रहे हैं तो वहां पर 12 से 15 किलो जो सीड होता है वो 1 हेक्टेयर के लिए अच्छा माना जाता है
1: जी। अब आती है बीज उपचार की बात, तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बीज उपचार कितना लाभदायक है।
0: देखिए, बीज उपचार बहुत ही लाभदायक है और हम आपके माध्यम से किसान भाई को ये बार बार अनुरोध करते आते हैं और आज फिर अनुरोध कर रहे हैं कि देखिए बीजोपचार जरूर करिए
1: जी,
0: क्योंकि देखिए बीजोपचार करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि आप अपने पौधे को स्वास्थ्य की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक बीजोपचार किया हुआ पौधा जो है उसको हेल्दी मानते हैं, स्वस्थ मानते हैं, और जब आप स्वस्थ पौधे को जब खेत में लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका फसल भी स्वस्थ होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सही ढंग से बीजोपचार किया है तो आप देखेंगे कि आपके खेतों में जो बीमारी का जो अटैक होता है, जब पौधे बड़े हो जाते हैं, जो बीमारियां लगती हैं या कीट लगते हैं, इन सब का प्रकोप कम हो जाता है, है ना
1: जी।
0: तो इसलिए बीजोपचार को जरूर करना चाहिए।
1: आपने तो अभी बताया बीज उपचार कितना लाभदायक है इसके बारे में
0: जी।
1: अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बीज उपचार कैसे करना
0: चाहिए, कैसे करें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक मैं दवा का नाम बताना चाह रहा हूँ
1: जी,
0: जिसका नाम है कार्बेंडाजिम।
1: कार्बेंडाजिम
0: जी
1: जी।
0: तो कार्बेंडाजिम जो है 2 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम लोग बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि किसान के पास या कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कार्बेंडाजिम उपलब्ध नहीं है, तो उस हालत में आप ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति केजी सीड। और इसको सीड ट्रीटमेंट करने का तरीका ये है कि उसको पहले 24 घंटा पानी में अच्छी तरह से भिंगा लें
1: जी।
0: सीड ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसको अगले 24 घंटा तक छांव में सुखा लें
1: जी।
0: जब ये सूख जाए तभी जा करके इसको खेत।
1: अब रोपा करने के लिए हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें।
0: देखिए, रोपा करने के लिए तो जो हमारी पुरानी विधि चली आ रही है कि खेत में पानी का जमाव होना चाहिए
1: जी,
0: है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पहले तो आप अपनी खेतों का जो मेड़बंदी है उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बारिश का टाइम में जो भी पानी मिले आपको वो आपके खेत से निकल के दूसरे के खेत में ना जाए,
1: जी
0: है ना
1: जी।
0: तो जब इस

0: ऐसे कहने का मतलब है कि आपने खेत में पानी का संचय करना है, आपको पानी रोक के रखना है, और जब पानी रुक जाए खेत में तब उसमें 2 से 3 बार प्लाइंग कीजिए ताकि वो पडलिंग हो जाए। पडलिंग का मतलब कीचड़ बन जाए,
1: कीचड़ बन
0: है
1: जाए
0: ना,
1: जी।
0: है ना, अच्छा तरह ढंग से कीचड़ बन जाए। 2 से 3 बार करना है, एक बार करेंगे तो पूरा ढेला नहीं टूटेगा, है ना, 2 से 3 बार करना है। और उसमें कोशिश करिए कि 5 से 7 सेंटीमीटर यानी एक उंगली के बराबर पानी जो है वहां पर जमा रहे। जब आप पडलिंग कर रहे हैं यानी जब आप उसको मड़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप एक कोशिश करिए कि 10 टन गोबर की खाद अगर मिल जाए तो उसको जरूर डालिए।
1: जी
0: ये डालने से क्या होता है, मिट्टी की संरचना सही होती है और जो आप सीडलिंग वहां पे लगाते हैं, रोपा करते हैं, वो जन्मता बहुत अच्छा है ना। तो इसलिए जरूर आप उसमें 5 से 10 टन FIM गोबर की खाद आप वहां पे डाल दें।
1: जी तो ये भी बता दें कि धान की रोपाई हमारे किसान भाई कैसे करें, उसकी उचित दूरी क्या हो और खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
0: जी सही बताया। देखिए अगर रोपा करने जा रहे हैं तो उसका सही समय जो है वो जुलाई के अंत तक खत्म कर देना चाहिए। अब है कि आपने पूछा कि दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो देखिए अगर नॉर्मल वैरायटी आप लगा रहे हैं, जो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, रोपा कर रहे हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस लगा रहे हैं, है ना, तो वहां पर रो से रो ने पंक्तियों से पंक्ति की दूरी आप 20 सेंटीमीटर रखें,
1: 20 सेंटीमीटर
0: बीस
1: जी
0: हाँ जी। लेकिन वही धान अगर आप श्री विधि से लगा रहे हैं तो वहां पर 25 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर का दूरी मेंटेन करें, यानी
1: जी
0: पंक्ति से पंक्ति, प्लांट से प्लांट। अगर आप श्री विधि से लगा रहे हैं तो एक सीडलिंग पर हिल डालिए, मतलब एक जगह जहां खोसेंगे सीडलिंग वो एक ही होगा। लेकिन अगर रोपा कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 सीडलिंग एक जगह पे आपको डालना है। तो ये तो हो गया स्पेसिंग और कितना सीडलिंग डालना है उसके बारे में। दूसरा प्रश्न किया आपने कि उर्वरक के बारे में,
1: जी
0: है ना। तो देखिए उर्वरक नाइट्रोजन आपको करीब करीब 100 kg के आसपास 1 हेक्टेयर में डालना है, फास्फोरस करीब करीब 60, पोटासियम जो है ये भी 60 kg/hectare के हिसाब से डालना है।
1: जी
0: अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें जिंक की कमी हो रही है तो 25 kg/hectare जिंक सल्फेट का भी आप उपयोग करें जहां पर जिंक का कमी है।
1: किसान भाइयों, आज आपने जाना कि धान की रोपाई वैज्ञानिक तरीके से करने और समय समय पर फसल की उचित देखभाल करने से उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परवेज आलम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को धान की रोपाई और इसकी देखभाल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो ये बड़ा बढ़िया जानकारी होलक कि धान कर रोपाई कर उचित देखभाल और ओकर प्रबंधन कैसे करबे से कर बारे में बड़ा अच्छा बता लें परवेज आलम जी। अब आओ एगो कृषि विकास गीत सुन लो थी।
2: हाँ भाई, काले की जानकारी कर संगे संगे हमरे के रिझ रंग भी करे
1: हाँ
2: के
1: हाँ
2: जरूरी
1: हाँ
2: है नहीं।
1: तो आओ तनी मन के रिझाई ले और यह कुरमाली में अजीत कुमार महतोर संगी मनकर गावल ये कृषि विकास गीत।

0: तो कृष्ण जीवन भाई बड़ा नगद गीत सुनवाले रो रे। अब चलो नई उम्र की नई फसल में हमरे मन एगो किसान भाई से गोठियाल गोइठ के सुनीला।
1: और किसान है पनु उराव और इनकर से बतियाए हैं संजीव कुमार।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों खेती के साथ साथ यदि हम अन्य कार्य करते हैं जैसे मुर्गी पालन पशु पालन इत्यादि कार्य करते हैं तो हमें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। यदि किसान साथी इस पर अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं तो बढ़िया मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, नई तकनीक को अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा ही कृषक साथी हैं जो बड़े पैमाने पर मुर्गी पालते हैं अंडे के लिए या फिर मटन के लिए और अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने इस क्षेत्र में। वह हैं कांके बुकरू ग्राम चामा के श्री पर्णु राव जी। पर्णु जी स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: पर्णु जी ये कार्य आप मुर्गी पालन बड़े तौर पर आप कर रहे हैं, काफी बड़े क्षेत्र में आपने ये व्यवसाय शुरू किया हुआ है, तो क्या मन में आया कि आपने मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया?
3: देखिए आजकल के डेट में है सो धीरे धीरे है सो कृषि कार्य के तहत है सो खेती जो है जमीन धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है या फिर कहें को कम होता जा रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा रुझान कृषि के साथ साथ पशुपालन की ओर गया। तो शुरुआत में हम ऐसे सुकर का पालन करते थे, लेकिन सुकर पालन छोड़ के अभी हम कुछ हद तक बकरी रखे हुए हैं और ज्यादातर ऐसे हमारे यहाँ अंडा उत्पादन के तौर पर और मीट पर्पस पर मुर्गी का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें आपको लेयर मुर्गी जो अंडा उत्पादन के तौर पर है सोनाली प्रभेद का है और देसी नस्ल की है और कुछ हद तक ऐसे ब्रॉयलर का भी हम चूजा हमारे यहाँ से उत्पादन होता है।

0: कुछ सेती है, उसमें वक्त लगता है,
1: जी जी जी
0: लेकिन वैज्ञानिक तरीके से कैसे आप अंडे से चूजे को पैदा करते हैं?
1: चूंकि हमारे पास मिस्त्री वगैरह भी है जो हैचरी मशीन का उत्पादन बनाते हैं, ऑर्डर पर बनाते हैं, और खुद का भी मशीन है, तो अभी हमारे यहाँ से चूजा का उत्पादन लगभग प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 लाख चूजा का उत्पादन पड़ता है।
0: अच्छा।
1: अब ये चूजा का उत्पादन जैसे ऑर्डर आता है उसी ऑर्डर के आधार पर हम लोग फिर सेल के लिए देते हैं, वो आउट ऑफ स्टेट भी जाता है और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी है, सो आपका सेल के लिए चला जाता है।
0: अच्छा, ये मशीन का निर्माण भी आप खुद करते हैं?
1: हाँ, मशीन का निर्माण हमारे पास मिस्त्री उपलब्ध है। हाँ, तो जो किसान हमारे यहाँ मशीन लेना चाहता है, कितना कैपेसिटी के चाहिए उसको मशीन, 250 से लेकर आपका है सो 10 से 20 हजार अंडा उत्पादन का कैपेसिटी का मशीन उपलब्ध है हमारे पास।
0: तो कैसे इसमें आप तैयार करते हैं इस चूजे को?
1: तो इस चूजे को जैसे कि गांव देहात में क्या होता है कि मुर्गी है सो सिकाई करती है, 21 दिन के बाद है सो चूजा है सो बाहर आता है अंडे की सिकाई करने के बाद, तो इसी तरह हम लोग है सो मशीन से जब सिकाई करते हैं तो मशीन से सिकाई करने से ये हम लोग को फायदा होता है कि अंडा जो देने की क्षमता होता है मुर्गियों में बढ़ जाता है पहला। दूसरा फायदा होता है कि आपको है जो अंडा जो ज्यादा मात्रा में हम लोग को चूजा प्राप्त होता है, क्योंकि अंडा जो सिकती है मुर्गी वो है सो टेम्परेचर कम या बेसी कभी होते रहता है, जिसकी वजह से पूरे अंडों से चूजा को है सो सृजन नहीं हो पाता है। लेकिन मशीन से अगर सिकाई करते हैं तो इसमें है सो करीब आपको 96 से लेकर 98% तक है सो अंडा से चूजा का उत्पादन हो जाता है आज के डेट में।
0: कितने समय में?
1: ये बस सेम टाइम लगता है।
0: अच्छा।
1: आपका जो नेचुरल केसेस है 21 दिन में चूजा का उत्पादन होता है, सेम केस यहाँ भी आता है। हम लोग 18 से 20 दिन तक है सो अंडा को मशीन में रखते हैं, उसके बाद 2 दिन पहले है सो अंडा को निकाल देते हैं, मशीन में रखते हैं, उसी के बाद है सो अंडा से चूजा अपने आप स्वतः बाहर आ जाता है।
0: जी, तो आप अंडे को भी मार्केट में सप्लाई करते हैं और
1: जी,
0: साथ
1: जी,
0: साथ
1: जी।
0: चूजा की भी बिक्री?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अंडा का जैसे कहीं से ऑर्डर आता है तो हमारे जो क्षमता है मशीन का उस क्षमता में अपना रखते हैं, उसके बाद जो शेष बच जाता है तो उसको हम लोग बाहर ऑर्डर पर ऐसे सप्लाई करते हैं, बिक्री कर देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव राव जी, आज आप इस कार्यक्रम में, और मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, इस पर आपने बातचीत की। प्रणव राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: और कृष्ण जीवन भाई, देखो इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरायला।
7: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: और प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची कर।
7: अब रवन कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
6: संध्या बहन के विदा देव।
7: जोहार, जोहार।

श्रोताओं सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हमारा कार्यक्रम किसानवाणी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा।

लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन

कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और चार बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 बजे की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार की विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।
बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024

2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है।
विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित

0: करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्म गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत।

तो श्रोताओं, शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा सफर। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म है CID। और इस खूबसूरत से गाने के लिए जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उनके नाम भी हम आपके साथ साझा कर दें। बेसिल खलको, मधु, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण और मनीषा सोरेन, ये सभी हमारे श्रोता हैं जिन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। श्रोता है हमारे पत्रातो हजारीबाग के। स्टेशन रोड झुमरी तिलैया से यह पत्र भेजा है किशोर कुमार मगधिया, सुनीता देवी और बंटी कुमारी ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भागवत वर्मा, इन्होंने दतरंगी से पत्र भेजा है। लक्षणपुर के विश्वनाथ साहू ने भी इसी गीत की फरमाइश की है। सिंघानी कोर्रा हजारीबाग के श्री प्रसाद हैं, इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश की है। और लेवई के हमारे साथी हैं गुलाब दास मानिकपुरी। श्रोताओं, कुछ और पत्र है इस पहले गीत के लिए हम शामिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी के हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा का। सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा और निखिल कांगड़ा, ये हमारे श्रोता है एकता कॉलोनी रोहतक के। एकता कॉलोनी रोहतक के ही हमारे श्रोता है बबीता बोध, अंगिता कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एस

दिन ढल जाए। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को सीआईडी में कार्यक्रम का अगला गीत। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है चितचोर और इस खूबसूरत से गीत को आवाज दी है हेमलता और यशुदास ने। और इस गीत के जिन श्रोताओं के पत्र हमें मिले हैं उनके नाम भी हम आपके साथ साझा करें। ग्राम पोचरा बरका काना के हमारे श्रोता महेश राम, सरिता देवी, पिंटू वर्मा, बरखा, सबिता, गुड़िया राज, रीता देवी, फुलवासो देवी और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने विषय गीत की फरमाइश की है। नवाटोला भिकनपुर भागलपुर के हमारे श्रोता हैं गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा, विकास, नितिन और मनोज पासवान का। रेलवे स्टेशन हजारीबाग के पास से हमें यह पत्र भेजा है शमीम अहमद, सगुफ्ता परवीन, नूर जहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद और एहसान अहमद ने। डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया का पत्र हमें मिला है पटेल नगर मलोड पंजाब से। शबनम नूरी, मकसूद आलम, पकीजा बेगम, महमूद आलम, शहनाज महफूज और शमशाद बेगम ये सभी हमारे श्रोता हैं सौदागर मोहल्ला रामगढ़ के। तो इन सभी श्रोताओं के साथ हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं इस खूबसूरत से गीत का।

हम आपको बता दें कि अपनी ट्यून की FM हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत रेडियो के अपने साथी सूरज के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज से। फिल्म का नाम बता दें, इसे हमने लिया है मेरे हुजूर से। और इस गीत के लिए जिन श्रोताओं के पत्र मिले हैं उनके नाम हम आपको बता दें। ये बड़ा बॉम्बो गांव सुपाई साई से हमें पत्र भेजा है देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, रेशमा, प्रीति, निशा और देबिन। ओखनी बड़ा शिव मंदिर हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं सौरभ नयन, गौरव नयन, श्रेया नयन, पीहू और आदित्य। ग्राम मुड़ेला लपरी जौनपुर से हमें यह पत्र भेजा है चंदा चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैयालाल और रीता देवी ने। बबलू कुमार हैं हमारे ये श्रोता हैं जागो निवास गली मटवारी हजारीबाग के। इंद्रपुरी हजारीबाग से हमें यह पत्र भेजा है दिलीप ठाकुर और अरविंद ठाकुर ने। कुम्हारटोली हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं ब्रजलाल सोनी। मगनपुर से यह पत्र भेजा है अमजद अली, अब्बास अली और आलम अली ने। ये पत्र हमें भेजा है गुलाम हसन, गुलाम सरवर और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। और इन्होंने ये पत्र भेजा है लाखे हजारीबाग से। मेन रोड बड़का गांव के श्रोताओं ने भी हमें पत्र भेजा है दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास, रंजना, गुड़िया रानी, गोलू, भोला और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस गीत की फरमाइश की है। ढेर सारे श्रोताओं ने इस खूबसूरत से गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी की आवाज़ में मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवाते हैं।

नैया। जी हाँ श्रोताओं, यही है वो फिल्म जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं यशुदास की आवाज में। और इस गीत के लिए भी ढेर सारे श्रोताओं के हमें पत्र मिले हैं। उनके नाम हम आपको बता दें, पंच मंदिर रोड हजारीबाग के हमारे श्रोता हैं कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद, शबाना परवीन, फिरोज अहमद, शमा परवीन और कलाम अहमद आरजू का। कुछ और श्रोताओं ने इसी गीत की फरमाइश की है, उनके नाम भी हम आपको बता दें। हमारे ये श्रोता हैं, जमशेदपुर से हमें पत्र भेजा है डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता साहनी, बरकाकाना के हमारे श्रोता हैं नाजनीन तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और मोहम्मद इफ्तिखार इब्राहिम का। बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरा ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा

रुक्मणी प्रियंका दीपिका ये हमारे सभी श्रोता है छिपा कला बड़का गांव के झुमरी तिलिया के हमारे श्रोता है विजय कुमार शर्मा और इनके साथी युगल प्रजापति देवंती नीलेश कुमार अंशुप्रिया ये हमारे श्रोता है गरमा मजगावा हजारीबाग की विमल गुप्ता वंदना गुप्ता मुंबई से शांति आश्रम बड़का गांव रोड हजारीबाग के हमारे श्रोता है मानस राज मानसी राज मिताली राज प्रांजल राज और अर्पित राज का राजेश चौहान संदीप चौहान किशोर चौहान सचिन चौहान ये हमारे सभी श्रोता है बनूसा दरियापुर महाराष्ट्र के हरदेव मीका बलविंदर बीरक जयतंग और मीका ये हमारे सभी श्रोता है गांधी चौक रोपड़ पंजाब के डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तानी ठाकुर सूरज ठाकुर सुजला ठाकुर ज्योति और रियांश ठाकुर ये इन्होंने यह पत्र हमें भेजा है महादेव घाट अमलेश्वर से तो ये अपने सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोता गीत के लिए कुछ और श्रोताओं ने हमें पत्र भेजे, उनके नाम भी हम आपको बता दें। बरका गाना के हमारे श्रोता अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सैनी और मोहम्मद अफजाल मलिक का।

श्रोताओं, नैया फिल्म के इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को ही कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या, न्यूज 8 और स्पॉटलाइट कार्यक्रम। तो बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा

0: अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
0: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है।

0: पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
1: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माही, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
4: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे दे।

0: करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे के करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
2: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Center in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Center approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shotput F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
4: Swami Vivekananda ji, युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
3: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इस धुन को सुनकर सुनने वाले के पांव न थिरके, ऐसा कोई बिरला ही होगा। हिंदी फिल्म संगीत के, खास तौर पर पुरानी फिल्मी गीतों के चाहने वालों में से शायद ही कोई होगा जिसने ये गीत ना सुना हो। जिस फिल्म का ये गीत है, उसके निर्माता, निर्देशक और नायक की हम बात करने वाले हैं। इस कलाकार को हम क्या कहें, एक्शन हीरो, रोमांटिक हीरो, कॉमेडियन, ये कलाकार था ही अलबेला। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भगवान दादा की।

भोली भाली सूरत मगर दिल के सच्चे थे भगवान दादा। पहलवानी के शौक के कारण सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते। भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1913 को हुआ। वास्तव में उनका नाम था भगवान आबाजी पालव, एक मिल मजदूर का बेटा। भगवान बचपन से ही फिल्मों के सपने देखा करता। हालात से मजबूर भगवान दादा को बहुत जल्द पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मुंबई आकर वो मजदूरी करने लगे और करने लगे तकदीर के बदलने का इंतजार।

मुंबई आकर भगवान दादा जब फिल्मों में काम पाने का प्रयास करने लगे तब मूक फिल्मों का जमाना था। किसी फिल्म निर्माण कंपनी में मजदूरी के साथ साथ वो छोटी छोटी भूमिकाएं भी करने लगे। अपने काम के साथ साथ भगवान दादा फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब गए। बतौर अभिनेता उनकी सबसे पहली फिल्म थी क्रिमिनल, जो एक साइलेंट यानी मूक फिल्म थी। 1938 में बनी फिल्म बहादुर किसान का उन्होंने सह निर्देशन किया। 1938 से 1947 तक भगवान दादा लो बजट की स्टंट और एक्शन फिल्में बनाते रहे, जो मजदूर वर्ग में काफी लोकप्रिय थीं। उस दौरान यानी 1941 में एक उल्लेखनीय तमिल फिल्म उन्होंने बनाई वन मोहिनी, जिसमें एम के राधा और श्रीलंका की अभिनेत्री थवमणि देवी ने भूमिकाएं अदा की। 1942 में भगवान दादा ने फिल्म निर्माण कंपनी बनाई जागृति पिक्चर्स। फिल्म निर्माता तो बन गए मगर कमोबेश मुफलिसी का दौर अब भी जारी था।

0: राम जी।
1: और लॉटरी लगी 1.25 लाख की नहीं बल्कि लाखों की। 1947 की बात है, जागृति पिक्चर्स के लिए चेंबूर्स में जागृति स्टूडियो का इंतजाम किया गया। राज कपूर की सलाह पर भगवान दादा ने एक सामाजिक फिल्म के निर्माण की तैयारी की। नायक तो वो स्वयं थे ही, नायिका के रूप में उस समय की मशहूर अदाकारा गीता बाली को चुना गया। फिल्म के संगीत का जिम्मा उठाया भगवान दादा के जिगरी दोस्त सी रामचंद्र ने। रुपहले पर्दे पर फिल्म आई अलबेला। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म की अपार सफलता ने भगवान दादा का जीवन बदल कर रख दिया। सी रामचंद्र के संगीत में बंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शोला कुछ ऐसे भड़का कि सुनने वालों के दिल आज तक धड़क रहे हैं।

फिल्म अलबेला के गीतों की एक और खास बात यह है कि जिन गीतों पर नृत्य किया है भगवान दादा ने, उनके साथ डांस करने वाले बाकी कलाकार असल में नर्तक नहीं थे बल्कि स्टंट्समैन थे, जो आम तौर पर भगवान दादा के साथ एक्शन फिल्मों में मारधाड़ वाले दृश्यों में भाग लेते थे। तो अलबेला के ये खासियत भरे बाकी गीत

अलबेला की सफलता का स्वाद चखने के बाद उसी टीम के साथ भगवान दादा ने 1953 में फिल्म बनाई झमेला, जिसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद भगवान दादा ने एक और फिल्म बनाई लाबेला, जिसके निर्माण में उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत झोंक दी, मगर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई। किस्मत ने उनसे फिर किनारा कर लिया।

आगे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भगवान दादा छोटी छोटी चरित्र भूमिकाओं में दिखने लगे। ये फिल्में थी झनक झनक पायल बाजे, चोरी चोरी और मिस बॉम्बे। गरीबी ने अपना रंग कुछ ऐसा बिखेरा कि जुहू बीच पर बना 25 कमरों वाला बंगला बेचना पड़ा। किसी जमाने में हफ्ते के सातों दिन वो अलग अलग मॉडल की कार से जाया करते, वो सातों गाड़ियां बिक गईं। भगवान दादा के सभी सहकारी उन्हें छोड़कर चले गए सिवाय सी रामचंद्र, ओम प्रकाश और राजेंद्र कृष्ण के। 4 फरवरी 2002, दादर की एक चौल में बने दो कमरों के मकान में ये अलबेला कलाकार भगवान को प्यारा हो गया। कभी

0: अलबेले कलाकार भगवान दादा पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आपने सुना। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

तलत महमूद को अभी आप सुन रहे थे जहां रहा फिल्मी कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

0: लपक झपक तू वार बदर मरत परत तू कार बदर लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू
1: आ गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना गिन गिन ना

लता मंगेशकर के गाए बैजू बावरा फिल्म के इस खूबसूरत से गाने के साथ ही रजनीगंधा का आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, जी पेश है कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे के गाए कुछ गाने। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा सफर। और आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में नवरंग फिल्म का ये गीत।

काबुलीवाला फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे को। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। फिल्म है चोरी चोरी और हम आपको बता दें कि आपने ट्यून किया FM हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं आज के फनकार में मन्ना डे के गाए कुछ गाने।

0: मक्कार फिल्म के इस गाने के बाद अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज में कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।
1: बाजू

0: तो प्यारे खाक की
1: मुश्किल जो आ पड़े।
2: किशोर कुमार और मन्ना डे के गाए इसी खूबसूरत से गाने के साथ ही आज के फनकार का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज हम आपको सुनवा रहे थे मन्ना डे के गाए कुछ गाने एफएम एक

102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा
1: बने हैं 4000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: with yet another golden triumph. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की यह सभा। कल सुबह 5:53 पर हम पुनः हाजिर होंगे कल के सभा के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।